0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज। चांदनी

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. ओके जानू से हम सॉन्ग ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM दिनेशा के जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग 30th ऑफ सितंबर वेंसडे का दिन व्हाट मंथ एंड जी हाँ मंथ एंड करके इस बात का डर लग रहा है कि भाई साल जल्दी निकल रहा है पर मंथ एंड करके इस बार

मैडी खूबसूरत आदमी एकदम, और जितना ही कमाल के एक्टर वो, और यू नो जितने ही हैंडसम वो, उतने ही प्यारे इंसान. आई मीन मुझे मौका मिला था एक बार उनसे बात करने का फॉर एन इंटरव्यू, एंड भाई क्रेजी, बहुत अमेजिंग इंसान है यार.

0: एक यही अच्छी चीज निकल के आई है कि एक दो गाने जो है बड़े प्यारे हैं इस मूवी वीर के। अगर नहीं देखी है तो कुछ खोया नहीं आपने, अच्छा ही किया। वेल, जानना चाहूंगी कि कैसा था आपका कल का दिन, अभी क्या कर रहे हैं, सब ठीक है ना? हाउ इज द मूड फॉर टुडे, व्हाट्स द वाइब ऑफ दिस वेंसडे, बताएं मुझे 3311063 पर एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर। फिलहाल ब्रांड न्यू ट्रैक भेज रही हूँ आपके लिए सुधरी रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
1: This is London Airport. The local time is 11:30 a.m. The temperature is 50.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: तनिषा अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में देखा हजारों दफा ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी रुस्तम. यू नो आई नो पलक मुच्छल, शी माइट नॉट रिमेम्बर मी, बट व्हेन आई वाज लाइक छोटा सा तो आई यूज्ड टू डू डांडिया ऐसे इन माय होम टाउन. और वहाँ हमारी लोकेलिटी में जब डांडिया होता था तो पलक मुच्छल यूज टू कम टू सिंग. जी हाँ, शी वुड कम एंड सिंग एंड यू नो गेस्ट प्रेजेंस बेसिकली. सो कई बार उनसे ऐसे बात हुई है. सुपर स्वीट शी इज़ इन पर्सन एंड नेवर थॉट यू नो कि वो हमेशा से ही बहुत कमाल गाती थी एंड बहुत बढ़िया बढ़िया काम करती हैं वो. यू नो लाइक वट एवर शी इज़ अर्निंग फ्रॉम हर सिंगिंग, वो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में चैरिटी करती हैं, काफ़ी सारी लोगों की मदद करती हैं, वो बचपन से ही करती आ रही है. इट्स नॉट न्यू कि बड़े होने के बाद यू नो व्हेन शी गॉट वर्क इन बॉलीवुड एंड ऑल, नो वो पहले से ही करती आ रही हैं. सो दैट्स वाई यू नो शी यूज टू कम एज अ गेस्ट एंड शी वुड सिंग एंड वी वुड डू डांडिया ऑन दैट. सो आई नेवर थॉट दैट यू नो अ पर्सन आई हैव बीन बिकॉज आई डिड नॉट नो हर पर्सनली, पर ऐसे मिलती थी तो मुझे लगता हाँ ठीक है ओके. और छोटे होते हो ना आपको डिफरेंस नहीं पता चलता इन चीज़ों के बारे में. सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है ओके. व्हेन आई हर्ड कि ओके शी इज सिंगिंग इन बॉलीवुड, आई वाज लाइक वाओ, हम कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इस लड़की को और इसने क्या कमाल कर दिया है एंड शी डिजर्व्स इट ऑल. कमिंग बैक टू द मैसेजेस, आज मुझे ऑलरेडी हंसी आ रही है. सो वी हैव गॉट अ फ्यू मैसेजेस ओवर हियर एंड लेट मी गिव यू द फुल कॉन्टेक्स्ट कि जब मैं यहाँ आती हूँ ना 6 बजे, उससे पहले ही मुझे कुछ मैसेजेस आ चुके होते हैं जिन्हें पता है कि मैं आने वाली हूँ. ठीक है, दे आर लिसनिंग टू मी एवरी डे एंड इट इज पार्ट ऑफ देयर रूटीन. लाइक हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, सुबह उठ के दे हैव टू डू दिस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स टू द फैमिली ग्रुप्स और टू देयर क्लोज फ्रेंड्स एंड टू पीपल हु रिस्पॉन्ड टू देयर मैसेजेस. सेम वे आई गेट द फॉरवर्ड्स हियर एंड उन्हें पता है कि मैं आके वो पढ़ने वाली हूँ, तो मेरे आने के 1-2 घंटे पहले ही वो पहुँच चुके होते हैं. सो सबसे पहले आज मैं नाजनी जी का नाम नहीं लूंगी, आज मैं पहले वाजिद साहब का मैसेज आपका सुनाऊंगी क्योंकि मेरे चेहरे पे मुस्कान ले आई है.
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, मैं पाकिस्तान से हूँ, इस वक्त मैं कतर में हूँ. आपसे मैंने एक बात पूछनी है, अगर आप मुझे सच सच बताएंगी तो
1: बिल्कुल कोशिश करूंगी.
2: ये बात है कि आप रोजाना सुबह जब नाम लेती हैं ना तो आप नाजनी जी का नाम सबसे पहले लेती हैं. मुझे तो कंफर्म लगता है या तो ये आपकी फैमिली मेंबर है या कोई रियल में आपकी फ्रेंड है या कोई आपके साथ इनका पक्का जो ना इनके साथ आपका कोई रेफरेंस है कुछ इस तरह है. मतलब कभी होता है बंदा ऊपर नीचे भी नाम लेते हैं, पहले किसी और का ले लिया फिर, लेकिन आपने पक्का नाजनी जी शुरू कर ले.
1: सही बात है.
2: नाजनी जी ने मैसेज किया, नाजनी जी ने, मैं 1 महीने से नोट कर रहा हूँ, 1 महीने से मुझे लग रहा है कि नाजनी जी कोई बड़ी खास बंदी है. आप बताइए कौन है ये.
1: That is such sweet of you, वाजिद जी. मुझे इतनी हंसी आई है ना ये मैसेज सुन के, मेरी मॉर्निंग बना दिया आपने पहले तो, इसके लिए थैंक यू सो मच. एंड एज आई सेड कि मेरे आने के पहले ही मैसेजेस आए हुए होते हैं. सो देर आर दीज फ्यू पीपल जिनके मैसेज कभी भी यू नो मिस आउट होते ही नहीं है. एक नाजनी जी हैं, एक शशिकांत पाटिल जी हैं, जुल्फी जी हैं एंड देर आर अ फ्यू मोर पीपल लाइक संधु जी एंड अबरा जी. इनके एवरी डे आई हैव देयर मैसेजेस. आई नो मैं ऑफिस नहीं पहुंची उससे पहले भी मुझे पता है कि आएंगे ही आएंगे. सो इसीलिए और सबसे पहला आई एम नॉट लाइंग टू यू, हर रोज अराउंड 3 बजे के अराउंड शायद नाजनी जी उठती होंगी और वो उस टाइम पे मुझे मैसेज करके यहाँ छोड़ देती है. जी हाँ, आज भी जो मेरे पास सबसे पहला मैसेज है वो नाजनी जी का ही है एंड वो आया है 3:10 पर सुबह. सो दैट इज़ वाई यू नो सबसे पहले नाजनी जी का नाम आता है हमेशा एंड मैं मैसेजेस ऐसे यू नो सीक्वेंस पे पढ़ रही होती हूँ, जिस तरह से वो आए होते हैं उसी सीक्वेंस पे, तो उस हिसाब से सबसे पहले वही होती है. खास तो देखो आप सभी हो, कोई एक इकलौता इंसान खास नहीं है, आप सब इतना प्यार दे रहे हो अपनी यू नो मॉर्निंग में, अपनी ज़िंदगी में हमें जगह दे रहे हो, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद अस एंड कुछ लगता है तो आके शेयर भी करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है. एंड इसीलिए खास तो आप सब हो यार, ऐसा नहीं है कि कोई एक खास है, ये सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो शुरू करते हैं नाजनी जी के मैसेज के साथ. कहती हैं, डू नॉट बी एम्बेरस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन. एंड काफ़ी सही बात है बिकॉज एवरी फेलियर कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है. वो आपके ऊपर है आप कैसे सीख रहे हो यार, अगर आप इग्नोर कर रहे हो उस लर्निंग को तो फिर नुकसान तो देखो आप ही का है. देन वी हैव संधु जी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वेंसडे एवरी वन, एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट, चेरिश इट एंड हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल. And we have Abrar Ji ka good morning. We have Shashikant Patil Ji ka good morning. He says, may God bless your day with love, peace and kindness. May all the blessings of God's perfect gift fill your heart and home today. And we have Zulfi Ji ka message. Scroll kar rahi hu, ruk jao. In life, always respect two things, time and words. Time once gone never comes back. Words once spoken cannot be taken back. And that is so true. I mean, words ke chakkar mein mera thoda problem ho chuka hai jeevan mein. Kaafi koshish karti hu, unko control karu. But yeah, we all need to take care of that. Bilal ji ka bhi message aaya hai, subah bakhair, good morning. Aur Wajid ji ka to maine sunai diya hai. Thank you so much, Wajid ji. आपकी इस कीन ऑब्जर्वेशन के लिए और आपकी इस क्यूरियोसिटी को आगे लाने के लिए मैं मेरा दिन आपने बना दिया. थैंक यू सो मच. एवरीबडी एल्स हैव एन अमेजिंग मॉर्निंग. मतलब एवरीबडी जिन्होंने मैसेज नहीं किया है वो उनके लिए भी हैव एन अमेजिंग मॉर्निंग. और बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लाइंड अप है. बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे. मूवी टिकट्स भी तो देनी है. तो फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
4: कूल सॉन्ग.
5: हनी, व्हेन आर यू कमिंग?
6: आई एम कमिंग बेबी, आई एम ऑन माय वे.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: रहना है तेरे दिल में मूवी से रूप कुमार राठौर साहब की आवाज में बड़ा ही सुंदर गाना दिल को तुमसे प्यार हुआ ओनली ऑन रेडियो ऑलब 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं। यहाँ पर आज का जो मैं ऐसे ज्ञान और मोटिवेशन यूथ से लेकर आई हूँ वो एकदम स्पष्ट हिंदी में है, ठीक है। कुछ नए के आरंभ के लिए कुछ पुराने का अंत अति आवश्यक है मेरी जान। मेरी जान मैंने ऐड किया उसमें नहीं था बट दैट इज सो ट्रू। वी हैव आर हैंड्स फुल राइट नाउ, ठीक है, और हमें कुछ और चाहिए, यू नो वी वॉन्ट टू पिक समथिंग एल्स ऑल्सो। तो ये जो फुल हैंड्स हैं इसमें से कुछ ना कुछ तो निकाल के रखना पड़ेगा ना जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और चल जाएगा उसके बिना। टू टेक दैट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर हैंड, स्पेस तो होनी चाहिए संभालने के लिए। दैट इज़ हाउ द लाइफ ऑल्सो वर्क्स। अगर आपको कुछ और नया पाना है तो आपको खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा, पुरानी आदतें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, एंड यू नो कुछ ना कुछ जाने देना पड़ेगा जो कि इस वक्त आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके ऊपर एक बर्डन की तरह है, आप बस यू नो करना है टाइप्स में कर रहे हो, आप मन से उस काम को नहीं कर रहे हो। सो जस्ट लेट दैट गो एंड डू समथिंग विच यू एक्चुअली लाइक, एंड इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग तो इसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल देती है क्योंकि आसान नहीं होता ना ऐसे आदतों को छोड़ देना, जगहों को छोड़ देना, यू नो लेट गो वाला जो थिंग है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जिस दिन वो सीख लिया ना काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। सेंडिंग अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ रूप कुमार राठौर साहब वीर मूवी से सलाम आया। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

आई स्टिल रिमेम्बर जब किंग कांस में गए थे और जो फेक एक्सेंट के साथ उन्होंने बात करी थी, एवरीबडी वॉज लाइक भाई प्यारे गाने बना रहा है, बी योर सेल्फ, वाई आर यू एक्टिंग, बट देन यू नो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रेशर. वो लोग जब वहाँ हैं ना तो फिट इन होने के लिए दे ऑल्सो हैव टू डू सो मैनी थिंग्स. हम बस ना ऐसे बाहर बाहर से देख के ऐसे जज कर लेते कि यार ये तो ड्रामा कर रहा है, बट वी डोंट नो द प्रेशर दे मस्ट बी फीलिंग, राइट? यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. Absolutely not. It is 33 degrees and it feels like 47 kilometer per hour ki raftar se hawa chal rahi hai, and it is going to be very hot, hazy and dangerous heat today in the afternoon. So please take care of yourself. 41 can be the highest and 31 will be the lowest temperature. So please khayal rakhe apna aur you know jo precautions lene ki zarurat hai meri wali nasal state mein na aane ke liye. प्लीज़ वो लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ सुपर अनॉइंग टू हैव दिस कोल्ड एंड दिस कफ, इट्स क्रेजी. सो प्लीज़ ख्याल रखें अपना और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जी बिंदास.

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha aap ke saath Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par. And what a beautiful track, Javed Ali sahab ki awaaz mein. And Qatar National Library ne ek digital kiosk jo hai wo launch kiya, and it is absolutely amazing. सबसे पहले तो इसलिए बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली डिवाइस ऑफ इट्स काइंड, जी हाँ, जो कि हमारी कतर नेशनल लाइब्रेरी में है. एंड इसको डिज़ाइन करने का रीज़न ये है कि दे वांटेड जो हेरिटेज और हिस्टोरिकल कलेक्शन है वो और भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, स्पेशली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. जी, सो दिस कियोस्क फीचर्स मोर देन 100 सेलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द हेरिटेज लाइब्रेरी, एंड विजिटर्स कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दीज आइटम्स थ्रू ब्रेल इंटरफेसेस, डिटेल टैक्टाइल रिप्रेजेंट that can be touched and explored, and Qatari sign language content. Yes, sign language content jo hai, it is being presented through Bo Hamad, Mada specialized Qatari sign language avatar. And ye jo project hai, ye develop kiya gaya hai Mada Assistive Technology Center mein, and it is being funded by Qatar Research Development and Innovation Council. And it is so amazing to make things more accessible and, you know, digitally advanced at the same time. That is the beauty of Qatar, evolving and taking the roots together. So yes, it is now available in QNL, Qatar National Library. Jaiye, check out kijiye.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: I need justice.
6: I need justice. I need change.
4: Drishyam The Conclusion. Starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
7: This time, when will it come and where will it come from?
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: Because the story has not been finished. The last part is left.
4: Overseas release by Zee Studios.
8: Hi, I'm Nawazuddin Siddiqui and you're listening to Radio Aloop.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: शामूर और रश्मित कौर की आवाज में नदियों पार फ्रॉम द मूवी रूही ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड कतर ने अलाउ कर दिया है लोगों को टू यूज देयर ड्रोन्स पर डेजिग्नेटेड एरियाज में और स्पेसिफिक टाइम के लिए सो जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं वो स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एरिया में अलाउड हैं कंट्री में एंड वो जो एरियाज हैं जो परमिटेड एरियाज हैं उनके बारे में आपको मित्रा शाप के थ्रू पता चल जाएगा एंड टाइमिंग सिर्फ दो ही है सुबह सनराइज से लेकर सुबह 9 बजे तक आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं या फिर दोपहर 2 बजे से लेकर सनसेट तक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा किसी और टाइम पर अलाउड नहीं है देयर विल बी रेपरकशंस सो ये जो नए अरेंजमेंट हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किए हैं इन कोऑर्डिनेशन विद जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड जो अदर अथॉरिटीज़ के यू नो परमिशंस एंड अप्रूवल्स लगते हैं वो सब कुछ लिया गया है उसके बाद ही ये डिसाइड किया गया है सो सिर्फ अप्रूव्ड एरियाज में परमिटेड आवर्स में ही आप इस्तेमाल करें ऑपरेट करें ड्रोन्स को एंड दे शुड ओनली बी यूज्ड फॉर देयर लाइसेंस्ड और ऑथराइज्ड पर्पस इन अकॉर्डिंग विद ऑल एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स अगर डेजिग्नेटेड जोन्स या फिर परमिटेड टाइम के अलावा कभी और यूज करता हुआ कुछ मिल गया तो लीगल एक्शन हो सकता है वायलेटर्स के अगेंस्ट सो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए कि जितना अप्रूवल मिला है उतने में ही अपना काम निपटा लें ठीक है और फिलहाल भेजिए जबरदस्त हिट योर वे स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट

0: तनिषा
1: अमित कुमार के और बहुत सारे आर्टिस्ट की आवाज में हमें तुमसे प्यार कितना झनकार बीट से क्रेजी म्यूजिक चल रहा है इसमें बैकग्राउंड नहीं तरीचा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड टुडे इज शान का हैप्पी बर्थडे जी सिंगर शान ब्यूटिफुल आवाज ब्यूटिफुल इंसान सो आई वॉज होस्टिंग हिज कॉन्सर्ट फ्यू ईयर्स बैक आई थिंक थ्री और फोर ईयर्स बैक एंड बैक स्टेज पे थे हम लोग मेरे साथ एक को होस्ट भी थे मेरे और हमारे पास ना ग्रीन रूम नहीं था सो एंड इट वाज वेरी हॉट एट दैट टाइम सो मॉरिशस में थी मैं तब वहाँ पर होस्ट किया था मैंने एंड हम लोग खड़े थे बाहर लॉबी में ऐसे जो क्यू कार्ड है हमारे हाथ में उसको लेकर हम हवा कर रहे हैं खुद को कि भाई मेकअप ना खराब हो जाए तो इतने में शान अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले एंड ही सॉ अस यू नो फैनिंग आवरसेल्व्स विद दोज क्यू कार्ड्स उन्होंने इमिडिएटली हमें अपना ड्रेसिंग रूम में बुला लिया एंड ही वॉज लाइक प्लीज सिट हियर यहाँ पे एसी है यू गाइज आर फीलिंग सो हॉट एंड यू हैव टू गो एंड लाइक यू नो डू ऑल द होस्टिंग एंड स्टफ अनाउंसमेंट एंड ऑल आप यहाँ पे बैठो एंड देन वहाँ पे कुछ देर बैठ के उन्होंने हमसे बड़े प्यार से बात की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बरसों से जानते हैं हम एक दूसरे को यू नो जोकिंग लाफिंग एंड सो आई मीन इट वाज सो सरियल दैट मोमेंट कि इतना बड़ा स्टार ही इज एन आइकन एंड यू नो पीपल लव हिम फॉर द वर्क ही हैज डन एंड ही हैज बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग एंड जरा सा भी गुरूर नहीं उस आदमी में बिल्कुल भी नहीं आई वॉज इन ऑ ऑफ हिम देन मैंने उनसे कहा कि एक वीडियो बनाते हैं साथ में यू सिंग दिस सॉन्ग फॉर मी एंड आई वॉज लाइक तुम खुद ही बोल रही हो कि मेरे लिए गाना गाओ मैंने कहा ऑब्वियसली हु एल्स विल से इज लाइक आई लाइक दिस सेल्फ लव हो तो ऐसा हो सो मेरे को अप्रूवल शान से मिल चुका था एंड देन ही डिड दैट वीडियो विद मी एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया परफॉर्मर तो वो है ही हम जानते हैं हम सब ने बहुत इन्जॉय भी किया था वहाँ पे एंड या सो विशिंग दैट अमेजिंग ह्यूमन बींग अमेजिंग आर्टिस्ट अ पर्सन हु हैज गिवन यू नो ब्यूटिफुल वॉइस टू आर इमोशंस शान अ वेरी हैप्पी बर्थडे सेंडिंग शान की आवाज में लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती काफी आईरोनिक हम तो मूवी से स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
2: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके गान बॉलीवुड की शान शान को वीडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे आज सुनिए

0: बहुत काम
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: wow.
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: okay, I'm not with her.
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: okay, that's... आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
4: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
5: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
4: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
5: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
4: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
6: लुलू, where the world comes to shop.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
9: इन एसोसिएशन विद
8: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं कतर में फॉर द न्यू रेडबुल विंग्स कप एंड EA स्पोर्ट्स FC 27 कॉम्पिटिशन. ये जो टूर्नामेंट है इट इज बींग हेल्ड अक्रॉस ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज इन पार्टिसिपेशन विद EA स्पोर्ट्स एंड प्ले स्टेशन. एंड इट इज ओपन टू कतर रेसिडेंट्स एज अबव 18 के ऊपर. हुएवर वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट दे कैन पार्टिसिपेट नो मैटर वट स्किल लेवल यू हैव. प्लेयर्स कैन एंटर थ्रू टू लीग्स, यूनिवर्सिटी लीग एंड ओपन लीग. सो यूनिवर्सिटी लीग में फॉर करंटली एनरोल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विद ऑन कैंपस क्वालिफायर्स ऑन PS5 playing FC 27 Rush. And Open League mein online competition hoga through PlayStation tournaments on PS5 using FC 27 Ultimate Team. And jo top players honge, they will advance to national finals. Eligible national champions can earn a chance to represent their country at the world final in Miami, USA in early 2027. So jo Qatar qualifier hai, wo October 24th tak close ho jayega. And the world final will take place at Inter Miami's new stadium and will combine gaming with real-life football experience. So all those who are interested, who are absolutely crazy about gaming, din bhar PS5 pe lage rehte hain. So jaiye, check out kijiye, participate kijiye if you are eligible for this. And this is so crazy na, how the world is moving. Jo games hum virtually khel rahe hain unko ek real life experience mein lekar aane ki jo koshish ki ja rahi hai. Every other day there is something new. Who would have thought this day will also come? कि जो गेम्स खेलने के लिए मम्मी डांटती है घर पे वो एक्चुअली एक यू नो नेशनल चैंपियनशिप बन सकते हैं. अमेजिंग. सो डू चेक इट आउट और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: Get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही roof के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: Hi everyone, this is Benny Deol here. Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm the number one. Abu Hoggy, Abu Hoggy. Bindas Morning.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
7: इन एसोसिएशन विद
6: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: Tanisha.
1: अमित त्रिवेदी और जसलीन रॉयल की आवाज में डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी ब्यूटीफुल गाना ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 FM. तनीषा आपके इस साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड जस्ट अ रिमाइंडर, अभी काफ़ी रोटेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पे रिमाइंड कर देती हूँ आपको कि कतर में किसी को भी ऑनलाइन ब्लैकमेल करना हैज़ ह्यूज रेपरकशंस. 3 years का जेल हो सकता है, 100,000 रियाल का फाइन भी हो सकता है. सो अगर कोई ऐसे आकर आपको परेशान करे तो नो योर राइट्स. एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल विद ऑल दीज ऑनलाइन स्कैम्स, यू नो द फ्रॉड्स. पीपल आर बिकमिंग सो स्मार्ट, तो हमें विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है. हमें अपनी सेफ्टी के लिए सारी चीज़ों की जानकारी रखने की बहुत ज़रूरत है. दैट्स वाई यू नो दे कीप रिमाइंडिंग दिस टू अस कि अगर कोई भी गलती से भी आपको किसी भी चीज़ के लिए ऑनलाइन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो उसे बोलो बेटा अगर पकड़ा गया ना तो बैन बच जाएगी. डू नॉट डू दैट, स्टॉप इट राइट देयर. मान जाए तो ठीक, वरना पे तो करेंगे ही करेंगे. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, बट सेफ रहें, अवेयर रहें और मस्त रहें और हमें सुनते रहें.
2: जल्दी तुम कहाँ पे देखो यहाँ के रास्तों में.
1: कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुन के दिल भरता ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा सुंदर. खान से सजदा. कि व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट द लेटेस्ट कोक स्टूडियो विच हैज कम आउट पाकिस्तान, जरा बताएं. और सुन रहे रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
0: कूल सॉन्ग.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
0: Cool song.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
3: लुलू, where the world comes to shop.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
6: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: तनिषा राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में सजदा फ्रॉम द मूवी माय नेम इज खान ऑन योर रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो गया है दृश्यम द कंक्लूजन की टिकट्स देने का यस सो टिकट्स हैं आज भी मेरे पास दृश्यम के लिए जो कि इस वीकेंड पे रिलीज हो रही है 3 अक्टूबर को हम साथ में देखने वाले हैं दोपहर 2 बजे सो हु एवर कैन एक्चुअली कम एट दैट टाइम ना प्लीज वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करें बिकॉज अदरवाइज दूसरों के चांसेस मिस आउट हो जाते हैं इफ़ यू विन है ना बट अभी सवाल मैं आपको बताने वाली हूँ सवाल नहीं एक्चुअली एक डायलॉग सुनाने वाली हूँ मैं अजय देवगन की ही मूवी का यू जस्ट हैव टू गेस कि कौन सी मूवी का डायलॉग है ये जी सो जरा गौर से सुनिएगा मेरी जान
2: वैसे आप अमेरिका में क्या करते हैं
3: अमेरिका में पतंग उड़ाता हूँ
2: क्या
3: मेरा मतलब है पतंग बनाता हूँ पतंग का कारखाना है मेरा
2: पतंग का कारखाना स्ट्रेंज
3: यहाँ स्ट्रेंज है अमेरिका में तो बहुत चलता है ये बिजनेस फ्लाइट कम पतंग ज्यादा उड़ती है
1: जी तो कौन सी मूवी है जिसमें अजय देवगन का पतंग का बिजनेस है काइट का बिजनेस है अमेरिका में 3311106 पर बताए क्रेजी मूवी इट इज आई एब्सोल्युटली एंजॉयड वॉचिंग दिस वन जिस मूवी का ही डायलॉग है नाम बता दो मूवी का फटाफट से और ले जाओ दृश्यम द कंक्लूजन की मूवी टिकट्स यू कैन ऑल्सो कॉल 4444106 पर फिलहाल सेंडिंग Shan's special today because it's Shan's happy wala birthday tanha dil beautiful track stay tuned on Jio Bindaas
4: jiski aawaz sunte hi khush ho jate hain sabke gaan bollywood ki shaan shan ko radio olive wish karta hai happy birthday aaj suniye

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही roof के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
0: हर सुबह 6 से 10 हर जेस्टन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: Tanisha. Farish Shafi और Zulfiqar आवाज में ब्लॉकबस्टर आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक एंड मैं ज़िलियन टाइम्स बोल चुकी हूँ इसका जो मेकिंग वीडियो है प्लीज देख लो बहुत प्यारा है यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके इस साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड मूवी टिकट अगर जीतना चाहते हैं तो जो मैं डायलॉग सुनाने वाली हूँ उसका सही जवाब दे दो कि कौन सी मूवी का है वो आई हैव गॉट आंसर्स ओवर हियर बाय द वे काफ़ी सारे सही हैं बट काफ़ी सारे गलत भी हैं धमाल नहीं है ये मूवी और ना ही ये मूवी प्यार किया तो डरना क्या है ठीक है अभी सुनो डायलॉग एक और चांस दे रही हूँ इसके बाद आगे आई विल बी अनाउंसिंग द विनर्स
1: वैसे आप अमेरिका में क्या करते हैं
2: अमेरिका में पतंग उड़ाता हूँ
1: क्या
2: मेरा मतलब है पतंग बनाता हूँ पतंग का कारखाना है मेरा
1: पतंग का कारखाना स्ट्रेंज
2: यहाँ स्ट्रेंज है अमेरिका में तो बहुत

0: है ये बिजनेस, फ्लाइट कम पतंग ज्यादा उड़ती है
1: जी। सो कौन सी मूवी है जिसमें अजय देवगन का पतंग का कारखाना है, वो भी अमेरिका में, क्योंकि वहां पे फ्लाइट कम और पतंग ज्यादा उड़ती है? बताएं मुझे 3311163 पर, और यू कैन कॉल 4441063 पर। यू कैन विन कपल मूवी टिकट्स फॉर दृश्यम द कंक्लूजन, जो कि इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है एंड 3 अक्टूबर को हम साथ में देखने वाले हैं दोपहर 2 बजे। कहाँ आना है वो हम आपको बता देंगे, बट ऑल्सो 3 अक्टूबर 2 PM अपना टाइम इसे हमारे लिए फिक्स रखिएगा, हमारी डेट है, ठीक है? डू नॉट फॉरगेट दैट। एंड फटाफट से मुझे जवाब दीजिए यहाँ पे 3311063 पर, कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? इसके बाद लौट के आती हूँ और फिर बताती हूँ कि कौन है विनर्स आज के। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान।
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour। ये गाना

0: खास मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई

0: तनिषा
1: नीरज श्रीधर सुनिधि चौहान की आवाज में हम शक्ल से कॉल इट यू ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं। अबर
2: वैसे आप अमेरिका में क्या करते हैं?
3: अमेरिका में पतंग उड़ाता हूँ।
2: क्या?
3: मेरा मतलब है पतंग बनाता हूँ, पतंग का कारखाना है मेरा।
2: पतंग का कारखाना? स्ट्रेंज।
3: यहाँ स्ट्रेंज है, अमेरिका में तो बहुत चलता है ये बिजनेस, फ्लाइट कम पतंग ज्यादा उड़ती है।
1: जी जी, ये डायलॉग था जो मैंने सुनाया था जिसका आपको मूवी नेम बताना था एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन कपल मूवी टिकट्स फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन एंड आई हैव गॉट सो मेनी आंसर्स ओवर हियर। प्राची का मैसेज है, नवीन, भद्रिक, श्याम एंड सैम्स, ओह माय गॉड आफ्टर सो लॉन्ग। तासु, ओके, हाय तासु जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, काफी दिन हो गए सुदेव भाई के साथ आपका शो नहीं सुना, ईगरली वेटिंग फॉर दैट, दैट इज सो स्वीट। आई हैव बीन मिसिंग, पता है मैंने मॉर्निंग शो दोबारा से जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि आप किधर हो, आपका मैसेज नहीं आया काफी दिन से, वेरी हैप्पी टू सी दैट। देन वी हैव तलाशा, शालीन, मलिक, जीत, मोहम्मद अली, कमल, विश, किसी के नाम की जगह पे सिर्फ इमोजी है, नाम लिखा करो दोस्तों, परवेज, देन वी हैव नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, मुदस्सर जी का मैसेज है, सिमरन का मैसेज है, सुमित इज देयर, यश, वाजी एंड हाय लिखा है नाम पे, हाय दो बार हाय है, कैसे नाम पढ़ूँ मैं ये, देवाशीष, अब्दुस, सबके मैसेजेस आए हैं और इसमें से कुछ गिने चुने गलत हैं, बाकी मोस्टली एवरीबडी इज राइट एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन ओनली सिलेक्ट टू लकी विनर्स टुडे। सो जो दो लकी लोग अभी इस वक्त जीत चुके हैं दृश्यम दी कंक्लूजन की टिकट्स, उनके नाम बताती हूँ, उसके पहले मैं सही जवाब तो बता दूँ। यस, द करेक्ट आंसर इज गोलमाल फन अनलिमिटेड, द फर्स्ट वन ऑफ द फ्रेंचाइजी एंड आई थिंक दैट वॉज द ओनली गुड वन, मुझे तो सिर्फ वही अच्छी लगी है, बाकी सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। सो द लकी विनर फॉर टुडे इज जीत एंड दिशा, कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, यू हैव वन कपल मूवी टिकट्स फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन जो कि हम साथ में देखने वाले हैं 3rd of October को, सैटरडे को दोपहर 2 बजे। आप प्लीज अपनी QIDs मुझसे यहाँ पे शेयर कर दीजिए एंड उसके आगे देन आई विल लेट यू नो, वी विल बी कॉलिंग यू कब कलेक्ट करना है टिकट्स, कहाँ आना है सब।

चाहे कितना भी कॉपी कर लो, ओजी तो ओजी ही रहेगा। क्रेजी सॉन्ग, इसकी जो एनर्जी है ना वो आपको भी ऐसे एकदम एंथुजियाज्म वाली एनर्जी से भर देता है। यही तो चाहिए ना, अभी दिन शुरू हो रहा है तो अभी तो एनर्जी अच्छी खासी मेंटेन रहनी चाहिए।

0: हाँ जी, ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू. फिलहाल भेज रही हूँ शान स्पेशल बिकॉज इट्स हिज बर्थडे. ऑल इज वेल, यही मंत्र लेकर लाइफ में चलना चाहिए, ठीक है. और बाबा रणछोड़दास ने कहा यार, ये दिल बड़ा बुद्धू है, इसको आप बस बाहर से बोलोगे ना सब ठीक है तो ये मान जाता है. सो फालतू का स्ट्रेस लेके दिन नहीं खराब करना अपना, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो बिंदास.
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान. बॉलीवुड की शान शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे. आज सुनिए शान के गाने सारा दिन.

0: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Z Studios.
4: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
5: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
6: हाय गाइस, दिस इज अबार्ट शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव।

0: morning. Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: बीवी नंबर वन से चुनरी चुनरी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है वैकी विजडम में आज हम बात करेंगे आर्थर टी की. So this guy was a CEO of a supermarket in US and wo basically unka family owned supermarket tha and then there was some dispute between two brothers, you know, the usual filmy story was going on, but Arthur was the CEO of that supermarket 2008 se lekar next I think 10 15 or 20 years I think, and the employees under his reign were so happy because the way he used to treat people, the way he would appreciate their work. If kisi ne overtime kiya hai, toh he would make sure ki along with the overtime pay, this person should get that much time to rest also. Kyunki unhone hamari company ko diya hai, toh kaam ke liye paisa toh banta hai, lekin kyunki unhone apna wo waqt bhi diya hai, toh wo waqt bhi unhe milna chahiye. Like, he would take care of every little thing. And all the employees, you know, who were working under him, they were so happy. And everybody used to adore him, the way he would talk to everybody so politely and nicely. So, sabko bahut pasand the Arthur. Ab hua yun ki family dispute to chal hi raha tha. To management ne decide kiya ki, by the way, mind you, Arthur ke reign ke time par, like when he was leading that company, तभी ना क्रेजी सेल्स हुई थी और बहुत लाइक अगर उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया तो सीधा 10 पर ले गए थे वो खुद ही लेकर गए थे. सो नाउ द मैनेजमेंट डिसाइड्स कि भाई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ खुश हो रहे हैं एंड यू नो आर्थर इज सो पोलाइट एंड नाइस टू एवरीबॉडी और जो कुछ भी मांग रहा है लाइक इफ समबडी इज आस्किंग फॉर अ रेज ये दे देता है, छुट्टी मांग रहा है दे देता है, एक्सटेंशन मांग रहे हैं छुट्टी में वो भी दे देता है. तो मैनेजमेंट वॉज नॉट हैप्पी विद दिस एटीट्यूड, उन्होंने फायर कर दिया आर्थर को. कैन यू इमेजिन गेटिंग फायर्ड बिकॉज यू आर टू गुड एट योर जॉब एंड पीपल अराउंड यू लव यू फॉर दैट. या दैट्स व्हाट हैपेंड विद आर्थर एंड गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. यू कैन नॉट गेस क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है. सो जब आर्थर को फायर किया गया जितने भी एम्प्लॉयज थे, यू नो जितने भी स्टोर्स में आर्थर वॉज द मैनेजर और ही वॉज द वन लीडिंग द टीम्स, वो सारे स्टोर्स में सारे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं काम करेंगे. जब तक आप आर्थर को वापस नहीं लेकर आते हो वी विल नॉट वर्क. नॉट जस्ट दी स्टाफ, दी कस्टमर्स जो उस एरिया के कस्टमर्स थे वो भी आर्थर को इतने अच्छे से जानते थे और इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि उन्होंने उस सुपर मार्केट में आना बंद कर दिया. दिस इज़ एब्सोल्यूटली क्रेजी. आई मीन कैन यू इमेजिन दैट इम्पैक्ट कि वो इंसान हर किसी की लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा था कि उसको अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई है सब एक साथ आके खड़े हो गए. एंड दैट यूजुअली वी डू नॉट सी इन कॉर्पोरेट्स, यू नो बॉस इज केयरिंग अबाउट देयर एम्प्लॉयज और द कस्टमर्स. कस्टमर्स आई थिंक दे केयर बट द एम्प्लॉयज दैट यूजुअली डजेंट हैपन. But in Arthur's case, it was absolutely different. And क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा था, sales 90% drop हो गई है, shelves खाली पड़ी हैं supermarket की, nobody is coming there. तो फिर finally हार के management को Arthur को वापस उसके position पर लेकर आना पड़ा. And then things went on. And that is so cool. It made me really happy to see that somebody with that much power actually using that power, you know, positively. To bring a positive impact in people's life and the way they are treating people. अपने आप को एक position पे होने के बाद भी किसी से बड़ा नहीं समझा उन्होंने. That is absolutely beautiful and that is one thing we all should have. You know, life में हम कहीं भी पहुंच जाएं, ground reality से दूर कभी नहीं जाना है. जी हाँ, बहुत ज्ञान हो गया. अब गाना सुनते हैं. Stay tuned and Jio Bindas.
1: अब सुनिए Olive का जबरदस्त है.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: सोनू कमर सुनीति चौहान की आवाज में दिल मांगे मोर से गुस्ताख दिल ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
1: सो आज का जो वर्ड है जो मैं अपनी डिक्शनरी से लेकर आई हूँ वो वर्ड ऐसे लोगों के लिए है जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना शो ऑफ करते हैं. आई नो बहुत सारे लोगों का नाम जहन में आ चुका होगा ये सेंटेंस सुनते ही. सो द वर्ड इज ostentatious. ostentatious. ostentatious. ostentatious. जो कि यू नो बहुत ज़्यादा फ्लैशी या फिर ओवरली एक्सपेंसिव चीज़ें दिखाते हैं शो ऑफ करते हैं कि भाई मेरे पास तो ये सब है जस्ट टू इम्प्रेस पीपल. एंड आई थिंक दैट डजंट वर्क ऑल द टाइम बट कभी कभी करना भी चाहिए. यू नो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है. अब वो आपको जज करना है कि कहाँ पे करना है और कहाँ नहीं करना है. सो या बट देर आर फ्यू पीपल हु आर यू नो फ्लैशी शोई एक्स्ट्रावेगेंट ऑल द टाइम. So that gets a bit annoying. And I know जो नाम सोच कर आप हंस रहे हैं मुस्कुराते रहिए अच्छे लगते हैं ये स्माइल बढ़िया लग रही है आपके चेहरे पे. Also, I wanted to tell you that today is International Podcast Day, by the way. And you know, Radio Olive has been doing so many podcast काफ़ी वक्त से और finally हमारा जो podcast platform है जहाँ पर आप हमारे सारे podcast सुन सकते हैं वो लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली voicecast.live. जी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. देयर इज एन ऐप एज वेल. सो जो भी ड्राइव कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं हमारे सारे पॉडकास्ट सारी कॉन्वर्सेशंस आपको वहां मिलने वाली है. सो डू नॉट मिस दैट आउट. एंड देयर इज समथिंग स्पेशल कमिंग टुडे हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉर पॉडकास्ट डे ओनली. सो कीप चेकिंग दैट स्पेस आउट ऑल्सो. radioolive.qa इज द हैंडल. नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से कर लो. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ओलिव. जियो बिंदास.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: तनिषा
1: तारे बाय फरक इंस्टाग्राम पे सुना था, कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम एडिंग इट टू माई प्ले लिस्ट एंड देन आस्किंग सिमरन टू एड इट टू आर प्ले लिस्ट. बड़ा ही सुंदर गाना एंड सो अप्रोप्रिएट, द लिरिक्स आर सो ब्यूटिफुल. यू नो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन से लाइफ में वो कनेक्ट हो ही जाता है, रिलेट कर ही जाते हैं. यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनिषा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं. यहाँ पर 9:52 कह सकते हैं ऑलमोस्ट हो चुका है क्लॉक में और वक्त हो गया मेरे जाने का. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, थर्सडे का दिन, बहुत सारी खुशियां क्योंकि वीकेंड. यस, एंड दोज हु हैव नॉट वन द टिकट्स येट, डू नॉट वरी, कशिश आएगी अभी, वो भी टिकट्स लेकर आएगी. शाम को सिमरन आएगी, वो भी टिकट्स लेकर आएगी. ऑल्सो हमारे सोशल मीडिया पर जाओ ना यार, radioolive.qa सबसे पहले फॉलो करने का है. अगर फॉलो कर रखा है तो नीचे चले जाओ, वहां पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, वहां से भी आप टिकट्स जीत सकते हैं दृश्यम दी कंक्लूजन के. यस, बाकी हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ. और वेदर थोड़ा ऊपर नीचे है तो प्लीज अपना ख्याल रखें, मेरे जैसी हालत ना हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं. ठीक है, सो स्टे हाइड्रेटेड एंड बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग. एंड यू नो, धूप से एकदम से अंदर आके ठंडा पानी पीना, एसी के नीचे खड़े हो जाना, ये सारी हरकतें नहीं करनी है. I sound like my mother, but yeah, I care for you, yaar. So come on, just a reminder. Have an amazing day. अपना ख्याल रखें, आप बहुत important हैं, इस बात को हमेशा याद रखें. और सुनते रहे Radio All. जी हो, बिंदास मेरी जान.

फिर तेरी कहानी याद आई से अलका याग्निक और कुमार सानू जी की आवाज में अमेजिंग वाला ट्रैक आया आपके रेडियो सेट्स पर, आपने एंजॉय भी किया आपकी कशिश के साथ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, काफ़ी सारी ना लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं कि यार इन पे ध्यान ना दें, लेकिन उन चीज़ों का जो है पॉइंट ही होता है कि यार हम पे ध्यान दो, हम पे ध्यान दो। तो मेरा तो कहना एक बार यही है कि एक बार ध्यान दो, पूरा अटेंशन दे दो, उसके बाद जो है वो चीज़ एकदम फिनिश। चाहे वो आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कोई ऐसी आदत हो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या आपका कोई बहुत टाइम से पेंडिंग टास्क हो, आज सारा कर दो, क्योंकि कल से तो देखो हम ना वीकेंड वाले मोड में जाने वाले हैं। अब देखो जैसे जैसे वेंसडे आता है ना, मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होने लग जाता है कि चलो बस दो दिन और, एक दिन और है अब, और फिर उसके बाद जो है फन करेंगे वापस। तो यार देखो, आप लोग भी फन वाले मोड में आ जाओ, आज जितना सारा काम है वो निपटा दो, कल जो है सारे फिनिशिंग टचेस दे देंगे और उसके बाद फिर वीकेंड को एंजॉय करेंगे। तब तक एक काम करो, 3311063 पर मुझे जरा हाय हेलो गुड मॉर्निंग कह दो, और अगर आपके आसपास कोई अच्छा सा सीन है, व्यू है, तो उसकी फोटो खींच के मुझे भेज दो, ताकि हमारे बीच की जो ऐसे बातचीत है वो आगे बढ़ सके। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में टॉक्सिक मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर तबाही ट्रैक जो है वो एंजॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश और कहते रहो मेरे साथ जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: टाइम चेक
2: ब्रॉट टू यू बाय
1: नानातल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवा के अलखोर।
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:13, दैट इज 10:13। स्टे ट्यून्ड, जी बिंदास।
4: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
5: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट

0: केके की आवाज में ये अमेजिंग वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया जन्नत 2 मूवी से। हां जी मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, मौसम तो जो है वो हल्का हल्का बदल रहा है, इतना हल्का हल्का बदल रहा है कि आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि यार ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आज मैं जो टेम्परेचर के तरफ देख रही हूँ ना मेरे मौसम वाले ऐप पर, इसमें जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेम्परेचर बता रहा है जो कल इस वक्त बता रहा था। हाँ जी, इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 40 डिग्री सेल्सियस एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस। यानी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है कल से, लेकिन आज जब मैं जो है सुबह निकल रही थी बाहर ऑफिस आने के लिए, तब मैंने देखा कि यार हाँ, थोड़ी धूप में जो है वो जो यू नो चुभने वाली चीज़ है वो थोड़ी सी कम हुई है। सो लेट्स होप कि आगे जो है जाते जाते हमें और राहत जो है मिलेगी। वैसे आपको राहत पहुंचाने के लिए असली चीज़ तो मैं अब लेकर आई हूँ, कूल संग अवधि आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इन्जॉय कीजिए एंड हाई हेलो गुड मॉर्निंग अभी बहुत कम लोगों का है, और लोगों का आना चाहिए। आप प्लीज़ मुझे हाई हेलो गुड मॉर्निंग और आपके आसपास अगर कुछ अमेजिंग चल रहा है, कुछ फन चल रहा है, तो उसकी फोटो खींच के भेजो यार मुझे, थोड़ी बातचीत आगे बढ़ाते। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून और कहते रहो मेरे साथ जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट

0: हंगामा मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ओवर. एंड आई किड यू नॉट, अगर आपको कोई अमेजिंग फैमिली कॉमेडी मूवी देखनी है ना, तो एक बार हंगामा जरूर से देख लेना. हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. एंड मैंने आपसे कहा था कि यार इतनी देर हो गई है बात करते करते, कुछ हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ तो कह दो. सो बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे आ चुके हैं. सबसे पहले तो मुझे श्रीनिवास जी ने जो है गुड मॉर्निंग कशिश जी लिखा है, तो थैंक यू सो मच. एंड उसके बाद मोहम्मद अब्बास जी ने जो है एक बहुत ही प्यारी फोटो जो है, शायद वो ऑफिस जा रहे हैं तो अपने सड़क की भेजी है अपनी कार से डैशबोर्ड से. एंड आप लोगों के जो है कुछ सवाल भी हमें जो है मिल रहे हैं कि ये जो हमने आपको कपल मूवी टिकट जीतने का मौका दिया है या जो लोग जीत चुके हैं उन्हें टिकट्स कैसे मिलेंगी. सो देखिए, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा. सो बस कॉल का इंतज़ार कीजिए, आपकी टिकट्स जो है वो आप तक बिल्कुल पहुँच जाएंगी. एंड आपको जो है पता चल जाएगा कि आपको कब आकर अपनी जो टिकट्स हैं वो कलेक्ट करनी है. एंड अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं जीती हैं तो नो वरीज मेरे दोस्त, इसी शो में लाइफ मस्त है में हम जो है आज भी एक कॉन्टेस्ट करने वाले हैं जिसमें आपको जो है अमेजिंग कपल टिकट्स जो है दृश्यम कंक्लूजन मूवी की जो है वो मैं देने वाली हूँ. सो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. एंड अगर आज आपका या आपके किसी लव्ड वन का बर्थडे है सो वो अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं शान के साथ, सो आपको हैवी वाला बर्थडे. सो आइए सिंगर शान के अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते हैं और आपकी कशिश के साथ कहते हैं जियो बिंदास.
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान. बॉलीवुड की शान, शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे. आज सुनिए

0: आने दो केक्स संडेज आने दो बहुत जगह है
1: फ्रिज में और पेट में, पर जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: ऑल दैट यू नीड।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: गुरु रंधावा कभी कभी ऐसे गाने जो है वो भी हमें दे देते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब थोड़ा सा उनकी वाइब से अलग है लेकिन हमें अच्छा लगता है। जी वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार क्या होता है ना कि हर रोज हम कोई ना कोई नया दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और आधी चीज़ों के बारे में तो हमें पता चलता है पॉडकास्ट से। हाँ जी, कोई ना कोई पॉडकास्ट हम या तो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर देख रहे होते हैं या तो फिर ऑन ईयर सुन रहे होते हैं या फिर मतलब देख रहे होते हैं। बट आपको पता है कि पॉडकास्ट की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी एंड आज जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पॉडकास्ट डे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि पॉडकास्ट नाम जो है वो कैसे पड़ा था। सो ये वर्ड जो है आईपॉड और ब्रॉडकास्ट को मिलाकर बना था और इस टर्म को सबसे पहले 2004 में जो है ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने यूज़ किया हुआ था एंड इसके वजह से जो है ना इसका नाम मतलब जब रखा गया था पॉडकास्ट आईपॉड और ब्रॉडकास्ट को मिक्स करके, सो माइक्रोसॉफ्ट को जो है काफ़ी बुरा लगा था क्योंकि आईपॉड का जो है इन्होंने नाम ले लिया, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि पॉडकास्ट को ब्लॉगकास्ट जो है वो कहा जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पॉडकास्ट जो है वो ऑलरेडी फेमस हो चुका था क्योंकि ट्विटर का आना हो गया था तब। और अगर मैं बात करूँ कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो अब पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड आपको दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन हर एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो किसी ना किसी पॉडकास्ट पर मिल जाती है एंड सच में ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड आया है। एंड पॉडकास्ट जो है वो ज़्यादातर ऑडियो में हुआ करता था लेकिन अब यूट्यूब पर जो है क्योंकि पॉडकास्ट आने लग गए हैं, सोशल मीडिया पे आने लग गए, तो अब ये पॉडकास्ट से ज़्यादा जो है वॉडकास्टिंग हो गई है। एंड अगर आपको वॉडकास्टिंग पॉडकास्टिंग जो है वो इन्जॉय करनी है तो रेडियो ऑलिव से बढ़िया आपके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हर टॉपिक पे हर तरीके कि टॉपिक पे हमारा डिस्कशन आपको मिल जाएगा, पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको स्टार्टअप के बारे में कुछ जानना है, चाहे आपको ब्रांड बिल्डिंग के बारे में जानना है, चाहे आपको हेल्थ के बारे में जानना है एंड अगर अब आपको आपके टॉपिक्स जो फन टॉपिक्स होते हैं ना उस पर बातचीत करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो जल्दी से जाकर रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, वहां पर भी आपके लिए कुछ बहुत नया आने वाला है। फिलहाल एक ऑलिवर सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा।

0: Check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10 दैट इज 11:10 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग रिकवरी टायर चेंज फ्यूल डिलीवरी बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट स्प्लिट योर पेमेंट इंटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट कार फॉर अप टू 3 डेज अ वन टाइम एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ एंड व्हीकल इंस्पेक्शन ट्रांसपोर्टेशन चूज बीमा थर्ड पार्टी of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: हाय, दिस इज एयर अमान।
3: एयर अमान,
2: लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव।
3: जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में मिस्टर इंडिया मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया, जो हर लड़की अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे जरूर एक ना एक बार रिलेट कर जाती है इस गाने से। और मेरे बैकग्राउंड में तो यही गाना पूरा टाइम चलता है, मैं हवा में ही रहती हूँ। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक चीज है जो मेरी लाइफ को टफ बनाने में जो है लगा हुआ है, एंड वो है व्हाट्सएप। एक तो मुझसे जो है व्हाट्सएप के मैसेजेस अगर बहुत सारे आ जाते हैं ना तो मुझसे देखे नहीं जाते मेरे ऑफिस वालों को। मुझसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि मैं जो ऑफिस का ग्रुप बना हुआ है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि इतने सारे मैसेजेस हैं, मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं पहले वाले मैसेज से पढ़ना शुरू करती हूँ, जब तक आखिरी वाले मैसेज पे आती हूँ तब तक लोग ऑलरेडी उस पर रिप्लाई कर चुके होते हैं, तो काफ़ी दिक्कत है। एंड जो लोग दो दो व्हाट्सएप जो है वो मैनेज कर रहे हैं, एक नॉर्मल व्हाट्सएप और एक बिजनेस व्हाट्सएप, उनको तो और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एंड आज ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे जो है ये पता चला है कि अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको पर मैसेज कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पे करना पड़े। अभी तक इसमें फाइनल जो है डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अब मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन व्हाट्सएप जो है मैसेज करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है और मैं भी आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से जाओ हमें व्हाट्सएप कर दो। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिन में क्या चल रहा है, क्या प्लान्स हैं? बाकी थोड़ी सी देर में जो है हम खेलने वाले हैं एक कॉन्टेस्ट, जिसमें जीत कर आपको मौका मिलेगा दृश्यम कंक्लूजन के कपल मूवी टिकट जीतने का मौका। सो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाला गाना जो आ रहा है बैंड बज गया, इसे इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान। बॉलीवुड की शान शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए शान के गाने।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा।

0: इन सब अमेजिंग लोगों का ये कॉम्बिनेशन जो है एकदम चटपटा सा बहुत ही बढ़िया मजा ही आ गया। हाँ जी वेलकम 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते जो है मैं पता नहीं किसके किचन में पहुँच गई एंड एक रील देखी मैंने और उसके बाद मेरा पूरा इंस्टाग्राम उसी रेसिपी से भर गया। एंड ये कुछ बहुत ही फैंसी नहीं है, ये जो है कुकुम्बर शॉर्ट्स जो है वो वायरल हो रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर कुकुम्बर को जो है आपने काटा एंड उसके बाद उसके अंदर का जितना भी मामला है उसे बाहर निकाल लिया एंड हॉलो कर लिया बेसिकली आपने कुकुम्बर को, एंड उसके बाद इमली की चटनी बनाकर जो है आपने उसके अंदर डाल दिया एंड वो जो आपने मामला निकाला था वो वापस उसमें डाल दिया। एंड लोग इतना ज़्यादा क्रेजी हो गए हैं इस चीज़ के बारे में, स्नैक के बारे में। मैंने तो अभी तक देखो ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ट्राई किया है या आप अगर ट्राई कर सकते हो तो एक बार मुझे ट्राई करके ज़रूर बताओ, फिर मैं पक्का इमली जो है वो कतर में ढूंढूंगी एंड फिर ये बनाऊंगी और आपको बताऊंगी मुझे कैसा लगा। फिलहाल अमेजिंग वाला चटपटा सा गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर।

मैं तो देखो आपको कब से समझा रही हूँ, आप ही लोगों की मेरी बात नहीं मानते कि वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करते जाओ और आपको मौका मिल सकता है अमेजिंग वाली मूवी टिकट्स जीतने का। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, पिछले 2-3 दिनों से जो है हम आपको दृश्यम कंक्लूजन के जो है कपल मूवी टिकट्स जो है वो दिला रहे हैं, जहाँ पर आप इस वीकेंड पर दृश्यम कंक्लूजन जो यू नो सिनेमा थिएटर्स पे आ रही है उसमें जाकर वो मूवी देख सकते हो। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं आपको मौका दे रही हूँ एंड आपको जो है बहुत ही आसान तो सवाल मैं पूछने वाली हूँ। अगर आप अजय देवगन फैन हैं या आपने दृश्यम देखी हुई है तो आपको इस जो है सवाल का जवाब इजीली पता होगा। एंड अगर आपने जो है बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हो और आपने बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज देखी है तो भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है आपके लिए। आपको बस मुझे तब्बू और अजय देवगन की साथ में जितनी मूवीज आई हैं उनमें से किन्हीं दो मूवीज का नाम फटाफट बताना है। 3311063 पर मैसेज करके तब्बू और अजय देवगन कौन सी मूवी में हमें साथ दिखे हैं उन दो मूवीज का नाम बता दीजिए। हिंट ये है कि अभी तक जो है 10 मूवीज में जो है साथ दिखे हैं एंड दृश्यम 1 और 2 आप नहीं लिख सकते। सो दृश्यम को छोड़कर और ऐसी कौन कौन सी मूवीज हैं जिसमें तब्बू एंड अजय देवगन हमें साथ में देखने को मिले हैं, 3311063 पर किन्हीं दो मूवीज का नाम आप मुझे बता दीजिए। और अब हमारे लकी विनर्स को मौका मिलेगा दृश्यम कंक्लूजन की कपल मूवी टिकट जीतने का। तो यार जल्दी से फोन उठाओ, मैसेज करो 3311063 पर, बताओ मुझे तब्बू और अजय देवगन आपने और कौन सी मूवी में साथ में देखे दृश्यम को छोड़कर। फिलहाल जो है मुझे लगता है इतने हिंट आपके लिए काफी है, इसीलिए काफी है वाला गाना जो है मुसाफिर कैफे से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये एंजॉय करो और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे व्हाट्सएप पे दो 3311063 जियो बिंदास।

0: Time Check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट इज 12:11. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
2: आने दो बहुत जगह है. आने दो केक्स. आने दो संडेज. आने दो बहुत जगह है.
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी. जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में. इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर. डोंट मिस आउट.
0: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. नानातल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुक वाकिफ अलखोर.
4: हाय, मैं हूं विवेक आनंद ओबेरॉय. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
5: I'm in number one, Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: के जी की आवाज में ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। हाँ जी, और आपकी कशिश ने आपका वीकेंड का प्लान जो है सेट करने का पूरा बीड़ा उठा लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने कंधों पे ले ली थी। एंड आपसे एक सिंपल सा सवाल जो है वो मैंने पूछा था दृश्यम 3 यानी दृश्यम कंक्लूजन के जो है कपल मूवी टिकट्स के बदले में। तो बस आपको इतना ही बताना था कि तब्बू और अजय देवगन दृश्यम सीरीज को छोड़कर और कौन कौन सी मूवीज में जो है साथ में दिखाई दिए हैं, साथ में उन्हें पेयर किया गया है। एंड 10 मूवीज जो है इन टोटल इन्होंने साथ में की हैं। सो बस आपको 2 के नाम जो है मुझे any 2 जो है आप मुझे बता सकते हैं, वो अभी रिसेंट की भी हो सकती है, वो शुरुआती दिनों की भी हो सकती है, बस आपको बताना है। सो एक विनर जो है वो हमारे पास आ चुका है और उनका नाम है जैन अली जी। कंग्रेचुलेशन जैन। एंड अभी भी आप लोगों के पास मौका है एक और जो है टिकट जीतने का। सो 3311063 पर मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए एंड आप हो सकता है हमारे अगले विनर बन जाए। सो जल्दी से मुझे बताइए कि तब्बू और अजय देवगन जी जो है इन्होंने और कौन सी मूवी जो है वो साथ में की है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि तब तक जो है हमें अमेजिंग वाले गाने जो है वो इन्जॉय करते रहने चाहिए। सो वॉल्यूम बढ़ाकर कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: बहुत जगह है, आने दो आने दो। केक्स आने दो आने दो। संडेज आने दो आने दो। बहुत जगह है
1: फ्रिज में और पेट में, बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: गाइस लव के लिए चाहे कुछ भी करो, लेकिन मूवी टिकट्स के लिए आपको बड़ा ही आसान सा काम करना था। आपको बस अपना फोन उठाना था और मुझे एक आंसर जो है वो व्हाट्सएप करना था। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जो है आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, थोड़ी देर पहले जो है मैंने आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल जो है वो पूछा था कि अजय देवगन एंड तबू को हमने दृश्यम जो सीरीज है, मतलब मूवी की जो सीरीज है, अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी मूवीज में साथ में देखा हुआ है। एंड इसके बदले में मैं जो है आपको दे रही थी दृश्यम कंक्लूजन यानी दृश्यम 3 की कपल मूवी टिकट्स। तो इस वीकेंड को सेट करने का जो मैंने जिम्मा उठाया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, वो मैंने पूरी कर दिया है। फर्स्ट विनर हमारे जो है वो जैन जी थे एंड सेकेंड विनर जो है वो हमारे राजू नायर जी हैं। सो आप लोगों को जो है हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा। एंड बाकी सब लोग निराश मत होइए, आपके पास एक और मौका है, आप शाम वाले शो में जो है जीत सकते हैं। एंड आपको ऐसे रेडियो ऑलिव जो है बहुत सारे मौके देता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो जाके रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। फिलहाल मैं आपको कुछ मूवीज के नाम बता देती हूँ जो अजय देवगन एंड तब्बू ने साथ में किए हैं। एंड 10 मूवीज अभी तक ये लोग साथ में कर चुके हैं। विजय पथ, हकीकत, दृश्यम ऑफकोर्स, गोलमाल अगेन, दे दे प्यार दे, भोला एंड औरों में कहां दम था। ये सारी मूवीज जो हैं, कुछ मूवीज जो हैं जो काफ़ी फेमस हुई है अजय देवगन एंड तब्बू की, वो हैं। एंड आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट है वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना शान की आवाज़ में आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, क्योंकि इस बर्थडे बॉय को जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनके अमेजिंग वाले गाने जो है आपको हर आर सुना रहे। सो जरा वॉल्यूम बढ़ा कर मुसु मुसु गाना जो है इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान। बॉलीवुड की शान, शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए शान के गाने सारा।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। Sounds unbelievable, but it's real.
0: Lulu Fashion Store का half pay back is back.
1: Selected ready-made garments, sarees, churidas, footwear, ladies bags और baby accessories पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का free shopping voucher instantly पाइए।
0: यानी fashion भी और rewards भी।
1: Half pay back, shop more, get rewarded instantly only at Lulu Hypermarket.
2: Lulu, where the world comes.

0: गाने का नाम फाइंडिंग हर, लेकिन मेरे दोस्त फाइंडिंग हर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद आपके पास चल के आ जाती है और उसका नाम है आपकी कशिश। हाँ जी, आपकी कशिश आपके साथ थी लाइफ मस्ट शो में, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है क्योंकि मैं यहाँ से जाऊंगी तभी तो लौट के कल और ज्यादा चटपटी बातें आपके लिए ला पाऊंगी। सो आज हमने रेसिपीज पे बात करी, आपको मूवी टिकट्स जो है वो जिताई, किस तरीके से जो है क्या कुछ ट्रेंड हो रहा है वो बताया, टेक्नोलॉजी पे बात करी। अब देखिए और किसी बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो 3311063 पर जल्दी से वो टॉपिक भेज दीजिए। बाकी आप जाकर जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को, ताकि हम आप तक जो है अमेजिंग वाला कंटेंट जो है वो पहुंचा सके। क्योंकि आज भी एक अभी बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो जो है वो हमने पोस्ट करी है, वहां पे आपके ओपिनियन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जल्दी जाइए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाकी हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। अब जाते जाते मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैं हर रोज कहती हूँ कि खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाओ, सनस्क्रीन लगाओ एंड मुझे बहुत सारा प्यार देते जाओ। बाकी वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम है जुगनी, इसे एंजॉय करो, ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर है। बाकी मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टाटा बाय बाय और आपकी कशिश के साथ कहते जाओ जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: आने दो, बहुत जगह है, आने दो, केक्स, आने दो, संडेज, आने दो, बहुत जगह है.
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
4: हाय मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop, back to back.

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas. Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
1: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
2: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
0: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
0: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas release by Zee Studios.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas,
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान। बॉलीवुड की शान शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए शान के गाने सारा दिन।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान भजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

गुड आफ्टरनून, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑल ओवर रिचार्ज. आई नो दिस टाइम इज वेरी लेजी वाला टाइम भाई, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन आपकी नींद भगाने के लिए बहुत सारी ऐसी खबरें लेकर आई हूं जो यू विल लाइक इट. सो चुटकियों में आपकी जो आलस है वो भाग जाने वाला है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आजकल जो इंस्टाग्राम है उसको स्क्रॉल करते हुए कभी कभी ऐसी पोस्ट मिल जाती है कि हमारा हाथ ना ऑटोमेटिकली अप्लाई नाउ पर चला जाता है, और आपके सामने भी एक ऐसी स्कॉलरशिप पोस्ट मैं बताने वाली हूँ जो आप सुनते ही आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छे. सो कतर में मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप और यू नो ऐसी आइल्स रिक्वायरमेंट जो है वो भी नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, स्कॉलरशिप के केस में ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी डेडलाइन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सब कुछ ऑफिशियली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जो है वो आपको चेकआउट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि अगर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है. सो यू कैन चेक आउट. और मैंने अभी अभी ये न्यूज़ देखा कि दोहा इंस्टीट्यूट जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो लेकर आया है. सो यू कैन गो एंड चेक आउट. सो अभी के लिए अगर आप या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई कज़न है या आपका सिबलिंग है, आपको लगता है कि हायर स्टडीज़ का प्लान जो है वो कतर में बनाया जा सकता है, देन फटाफट से जाइए उनको बताइए, क्योंकि इंटरनेट पर अपॉर्चुनिटी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी मिल जाती है. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. Stay tuned, Jio, Bindaas.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
4: जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: हमने लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज,
1: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
6: ऑलिव रिचार्ज।
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: सो आज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है, लैंग्वेज की बात करते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑल ओवर रिचार्ज। यूनाइटेड नेशंस ने 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे में रिकॉग्नाइज किया है, और आज है ट्रांसलेशन डे। और ये डेट जो है ये एसोसिएटेड है टू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इस साल का थीम क्या है? डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज राइट्स, ठीक है, द पावर ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। और मुझे इसका एक पार्ट सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, द पावर ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। ट्रांसलेशन सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं है। कभी कभी हस्बैंड बोलता है आई एम फाइन, और वाइफ को ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको पता है, एक्सप्रेशन देखकर पता चल जाता है। सो नो, यू आर डेफिनेटली नॉट फाइन। सो हम हर रोज ना लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड्स की नहीं, इमोशंस की। सो आज का सवाल है कि आपको दुनिया की कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और उस लैंग्वेज का कौन सा वर्ड है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। और अपनी लैंग्वेज में भी मुझे कुछ बोल के बता सकते हैं आप। फटाफट से अपना वॉइस नोट भेजिए ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: कैसी दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: जब बात हो रही थी लैंग्वेज की और आज 30th सितंबर को इंटरनेशनल लैंग्वेज डे होता है, तो यहाँ पर मुझे याद आया कि आज तो इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे भी है. सो दुनिया भर में पॉडकास्टिंग को सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन. द सेलिब्रेशन ऑफिशियली स्टार्टेड एज अ नेशनल पॉडकास्ट डे इन 2014 एंड बाद में ये इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे बन गया. सो क्योंकि रेडियो और पॉडकास्ट दोनों में एक कॉमन चीज़ है विच इज वॉइस, लेकिन डिफरेंस क्या है, पॉडकास्ट आपको वेट नहीं करवाता. आप कल के एपिसोड आज सुन सकते हैं और आई वॉज थिंकिंग 2019 का इंटरव्यू आप 2026 में भी डिस्कवर कर सकते हो. सो रेडियो इज हैपनिंग राइट नाउ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हो और हम दोनों एक ही मोमेंट शेयर कर रहे हैं. सो रेडियो इज लव फॉर मी. मे बी आपको अगर कोई पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है देखना, या आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता व्हाट दे डू कि घर पे भी कोई काम करते करते कोई ऐसा पॉडकास्ट लगा लेते हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ सीखना चाहते हैं. सो यू टेल मी, आप पॉडकास्ट में क्या सुनना पसंद करते हैं? कॉमेडी, सेलिब्रिटी कॉन्वर्सेशंस या स्टोरी, या फिर कोई नॉलेज या कोई पर्टिकुलर टॉपिक? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, ऑलिव रिचार्ज, ओनली ऑन रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके गाल. बॉलीवुड की शान शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे. आज सुनिए शान के गाने.

सो आज बर्थडे एक ऐसी आवाज का जिसे सुनते ही 2000 का टाइम जो है वो बॉलीवुड याद आ जाता है, यानी कि 2000s वाला टाइम. यस, टुडे इज शान्स बर्थडे. सो बेसिकली उनका असली नाम जो है शांतनु मुखर्जी है, यानी कि शान. आज वो 53 इयर्स के हो गए हैं. उनकी वॉइस स्पेशली रोमांटिक और मेलोडी वाले जो हिंदी गाने होते थे उनके साथ याद की जाती है. सो तन्हा दिल हो गया, चांद सिफारिश हो गया, जब से तेरे नैना मिले, मैं हूं ना, ये सब गाने आपके मतलब ऐसे बिल्कुल आंखों के सामने है, आप कभी भी गा सकते हो. बट यू नो व्हाट, कुछ आवाज़ों को ना हम लिरिक्स की वजह से याद नहीं रखते. हम उन्हें इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि हमारी लाइफ का कोई मोमेंट उनकी आवाज़ के साथ अटैच होता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज. सो चाहे वो पहला क्रश हो, स्कूल का फेयरवेल हो, कॉलेज हो, फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव हो, सॉन्ग खत्म हो जाता है लेकिन यादें नहीं खत्म होती. सो आज शान के बर्थडे पर आप मुझे बताइए आपकी लाइफ का वो कौन सा गाना है जिसे सुनते ही आप इंस्टेंटली किसी पर्टिकुलर मेमोरी में चले जाते हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज रेडियो.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 FM جیو بنداس.
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर. डोंट मिस आउट.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

So today is the birthday of Formula One champion Max Verstappen. Yes, Max was born today only 1997 में और आपको पता है कि बेल्जियम में उनका बर्थ हुआ था. तो उन्होंने ही मेड हिज फॉर्मूला वन डेब्यू एट जस्ट 17 ईयर्स एंड 166 डेज. ऑलमोस्ट मतलब 17 साल कुछ दिन उनकी एज थी. एंड फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन बने वो 2021 में. उसके बाद 2022, 23 और 24 में भी. अब फॉर्मूला वन को देखते हुए हमें क्या दिखता है? स्पीड दिखती है, कार्स दिखती है, ओवरटेकिंग दिखती है, क्राउड दिखता है, लेकिन ड्राइवर के पीछे होता है मतलब एक बहुत सारा सालों का कार्टिंग, यू नो, फिटनेस, रिएक्शन, ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, कितना कुछ है यार. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑल ओवर रिचार्ज. और फॉर्मूला वन कतर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कितना क्रेज है. सो रेस में ना ड्राइवर का एक सेकेंड स्लो होना हेडलाइन बन सकता है, बट उस एक सेकेंड को सेव करने के लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है. और मे बी यही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ऑडियंस को परफॉर्मेंस दिखती है, परफॉर्मर का प्रिपरेशन नहीं दिखता. सो यू टेल मी, आपको किसी भी फील्ड में ज्यादा इंप्रेसिव क्या लगता है, नेचुरल टैलेंट या फिर सालों की मेहनत? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर सेम 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
0: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
3: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: जब लाइफ मौका देगी क्या करेगा आने देगा क्या जाने देगा

0: सो भाई इंडियन सिनेमा से एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। इंडिया की ऑफिशियल एंट्री फॉर 99th एकेडमी अवार्ड है मराठी फिल्म गोंधार, जो डायरेक्ट किए संतोष देवाखर ने। फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किया गया 33 सबमिटेड फिल्म्स में से। राइट, मैंने अभी तक इस मूवी को देखा नहीं है। फिल्म रूरल महाराष्ट्र में सेट की गई थी और महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल गोंधार फोक रिचुअल को अपनी स्टोरी और बैकड्रॉप में यूज करती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंडिया से ऑस्कर के लिए जाना मतलब ऑटोमेटिकली ऑस्कर नॉमिनेशन मिल जाता है। पहले ऑफिशियल एंट्री, फिर एकेडमी की एलिजिबिलिटी प्रोसेस, फिर शॉर्टलिस्टिंग और फिर फाइनल नॉमिनेशन। सो राइट नाउ गोंधार इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री, नॉट एन ऑस्कर नॉमिनी। सो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे रीजनल सिनेमा का ही इंटरनेशनल जर्नी जो है वो कितना बढ़िया लग रहा था, तो मैंने इस मूवी को देखना स्टार्ट किया। क्योंकि समटाइम्स अ स्टोरी बिकम्स यूनिवर्सल विदाउट लूजिंग द प्लेस इट केम फ्रॉम। एंड इसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि मराठी आए, भाई आप ट्रांसलेट कर सकते हो, सब टाइटल्स के साथ देख सकते हो, हिंदी में देख सकते हो, और आज तो इंटरनेशनल लैंग्वेज डे भी है। सो आपको सिर्फ इमोशंस को समझना है। सो यू टेल मी, क्या आपको लगता है कि एक फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत है या फिर टैलेंट और स्टोरी की? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, नंबर इज सेम 3311063, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
0: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट
4: ने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
5: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
3: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावत एंड मेनी मोर
6: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
3: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
6: Because the story is still not over. The last part is still left.
3: Overseas release by Z Studios.
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds. Me, sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

जब एंटरटेनमेंट की बात हो ही रही थी तो एक नया एंटरटेनमेंट फॉर्मेट है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, विच इज माइक्रो ड्रामा। भाई इसके इतने छोटे छोटे एपिसोड्स हैं जो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाते हैं। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि स्टोरी जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है, बिल्कुल कुछ मिनटों की होती है और मोबाइल फर्स्ट फॉर्मेट में आ जाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑल ओवर रिचार्ज। ये ट्रेंड ना सोशल मीडिया और यूट्यूब से ग्रो हुआ और अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी इस फॉर्मेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो फॉर्मेट का फॉर्मूला ऑलमोस्ट बहुत सिंपल है, हुक बनाना, ड्रामा क्रिएट करना, ट्विस्ट लेके आना और छोटे छोटे बनाना। बस पहले हम बोलते थे कि ट्रेलर कितना शॉर्ट है, अब हो सकता है कि कोई बोले कि मूवी कितनी शॉर्ट है, मतलब 2 मिनट में खत्म हो गई। और देयर इज समथिंग फैसिनेटिंग हियर, मतलब हमारी अटेंशन स्पैन इतनी बदली है या एंटरटेनमेंट ने हमारी अटेंशन को स्पैन को बदल दिया है, दैट्स द रियल क्वेश्चन। मतलब सोचना पड़ेगा, आपको क्या लगता है, वुड यू वॉच अ 2 मिनट स्टोरी एवरी डे, या फिर आप भी पूरे 2 घंटे मूवी देखने वाले लोगों में से हैं? बाय द वे मुझे तो अच्छी लगती है लंबी लंबी सीरीज। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, 3311063 मेरा नंबर है और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव पर ऑलिव रिचार्ज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
1: Lulu Fashion Store का Half Pay Back is back.
0: Selected ready-made garments, sarees, churidas, footwear, ladies bags और baby accessories पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
1: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
0: Half Pay Back, shop more. Get rewarded instantly only at Lulu Hypermarket.
2: Lulu, where the world comes.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance lekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.
4: Radio Olive

0: सो टुडे इज 12th डे ऑफ एशियन गेम्स 2026 और आज इंडिया का स्केड्यूल काफी पैक है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑल ओवर रिचार्ज. सो आज इंडिया एथलीट्स में बॉक्सिंग, शूटिंग, रेसलिंग, जूडो, साइकिलिंग, हॉकी, स्क्वैश, टेनिस और गोल्फ और दूसरे भी चीजें में जैसे मल्टीपल स्पोर्ट्स में एक्शन में है. और स्पेशली वुमेन्स हॉकी में इंडिया का साउथ कोरिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल जो है वो स्केड्यूल है. सो वाइल बॉक्सिंग और रेसलिंग में भी मेडल अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, बस मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है विच इज हम इंडिया में स्पोर्ट्स बोलते हैं, क्रिकेट सोच लेते हैं. मतलब जैसे ही आप बोलोगे कि और आज तो मजेदार मैच है, आपको लगेगा क्रिकेट का मैच है. लेकिन एशियन गेम्स में देखिए यहाँ पर बॉक्सर, रेसलर, शूटर, साइकिलिंग, हॉकी प्लेयर सब कुछ है और कितने डिफरेंट एथलीट्स एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्रिकेट के बाहर भी इंडिया की जो स्पोर्टिंग स्टोरी है वो काफी वाइड है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप क्रिकेट के अलावा कौन सा स्पोर्ट है जो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, नंबर सेम 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान. बॉलीवुड की शान शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे. आज सुनिए शान के गाने.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

एक ऐसा दिन है जो आपको सीधा चाइल्डहुड मेमोरी में लेकर जा सकता है, वर्ल्ड स्कूल मिल्क डे, विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट वेंसडे ऑफ सितंबर। ठीक है, अब स्कूल का मिल्क याद है, उस टाइम मिल्क पीना कोई पर्सनल चॉइस तो नहीं था, मतलब खाली करना पड़ता था ग्लास, आपको बहुत सारी डांट पड़ती थी, लेकिन हमें पसंद नहीं था और हम सोचते थे व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। और लंच बॉक्स, एक फ्रेंड का पराठा, दूसरे के पास होता था सैंडविच, किसी के घर से आता था होममेड लड्डू, और सबसे वैल्यूएबल करेंसी थी तू मुझे ये दे मैं तुझे वो दे देती हूँ, ऐसा करके हम लंच को बदल देते थे। पर फनी थिंग इज, चाइल्डहुड में हम स्कूल ख़त्म होने का वक्त वेट करते हैं और बड़े होकर स्कूल के लंच ब्रेक्स मिस करते हैं। सो यू टेल मी कि स्कूल में आप किस फ्रेंड से लंच बॉक्स का वेट करते थे और आपको उसके लंच बॉक्स का क्या सबसे ज़्यादा ऐसा डिश था जो बहुत पसंद आता था। एंड आई एम स्टिल मिसिंग दैट सम होममेड लड्डूज एंड पूरन पोलीज जो मुझे बहुत पसंद हुआ करते थे, फिर मैं घर पे आके मेरी मम्मी को बताती थी कि मुझे ऐसा कुछ बना कर दो। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
3: My daughter needs justice. I
4: need justice. बदला चाहिए
2: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावत एंड मेनी मोर
5: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
2: द एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है आखिरी हिस्सा बाकी है
2: Overseas release by Z Studio.
6: You, घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते. कहाँ है सब?
7: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर.
6: क्या? कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर.
7: Green Tara Contracting and Services, professional cleaning और eco-friendly pest control के experts, advanced equipments के साथ. और हाँ, maid और cook service भी
8: available है. Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
1: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
0: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
1: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
0: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
2: लुलू, where the world comes.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: लगा और हो जा रिचार्ज।
5: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: आज ना जियो हॉटस्टार पर एक स्पोर्ट्स ड्रामा स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो रहा है. इसका नाम है मैं लड़ेगा. स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने भी चेकआउट नहीं किया है इसको. इसके स्टार हैं आकाश प्रताप सिंह. फिल्म एक यंग मैन की स्टोरी फॉलो करती है जो डिफिकल्ट फैमिली सर्कमस्टेंसेस से निकलकर बॉक्सिंग डिस्कवर करता है. आर्मी हॉस्टल पहुंचने के बाद बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और नेशनल चैंपियनशिप का ड्रीम देखना स्टार्ट कर देता है. फिल्म एक्चुअली थिएटर्स में आ गई थी April 2024 में और रिलीज हुई थी और अब नियरली 2 साल के बाद OTT पर आ रही है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज. बस स्पोर्ट्स फिल्म्स का मैजिक पता है क्या होता है? आप बॉक्सिंग देख रहे होते हो लेकिन एक्चुअली स्टोरी होती है बहुत सारी चीजों के साथ, जैसे फियर के अगेंस्ट लड़ना, फैमिली के अगेंस्ट फाइट करना, सर्कमस्टेंसेस के अगेंस्ट फाइट करना और कभी कभी खुद के अगेंस्ट भी फाइट करना. इसीलिए स्पोर्ट्स मूवी ना सिर्फ स्पोर्ट्स लवर के लिए नहीं होती. आपने दंगल देखी होगी, आपने लगान देखी होगी, उसमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलती हैं. सो आई विल से कि अगर आपको ऐसा है कि यार वीकेंड तो बहुत जल्दी आने वाला है और थोड़ा थोड़ा कुछ देखना स्टार्ट करते हैं, OTT पे चेकआउट करते हैं कि इस वीकेंड पे लिस्ट बनाते हैं क्या क्या देखना है, तो आप इस मूवी को भी ऐड कर सकते हो. एक्चुअल मैच आपको पसंद है या एथलीट की जर्नी जो मैच तक पहुंचाती है उसे वो आपको पसंद है, बताइएगा जरूर. 3311106 माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान. बॉलीवुड की शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे. आज

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600 प्लस पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड।
3: TNC अप्लाई। आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
0: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
1: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, Kumul Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive
4: Recharge. This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: आजकल ना AI को लेकर सबसे कॉमन क्वेश्चन पता है क्या है? AI मेरी जॉब ले लेगा? भाई ये क्वेश्चन मार्क रहता है सबके मन में। बट फाइनेंशियल टाइम्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि अपनी नई किताब में वी आर नॉट मशीन्स एक स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लोर करती है, AI और ऑटोमेशन के बाद जॉब्स एक्चुअली चेंज कैसे होंगी। सो बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रियल वर्कर्स के एक्सपीरियंस को रिपोर्ट किया है। बुक में जो है ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स, जहाँ मशीन ट्रांसलेशन के बाद भी कुछ फ्रीलांसर्स का वर्क ज़्यादा मैकेनिकल और लेस रिवॉर्डिंग हुआ। वहीं स्वीडन की एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड माइन में ऑटोमेशन ने सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने पर हेल्प की। सो स्टोरी सिंपल है, AI गुड या AI बैड नहीं है, रियल क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा रहा है। क्योंकि मशीन ना कुछ काम हमसे बेटर कर सकती है, बट एम्पैथी, जजमेंट, क्रिएटिविटी, ह्यूमन कनेक्शन, यहाँ कॉन्वर्सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो यू टेल मी कि अगर AI आपके जॉब का एक बोरिंग टास्क परमानेंटली कर दे, तो आप कौन सा टास्क उसके हवाले करना चाहोगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव फॉर नाउ। आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल थर्सडे है, वीकेंड भी है, लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस, लॉट ऑफ न्यू यू नो थॉट्स के साथ हम यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुपर हिट गानों के साथ एंजॉय कीजिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास, बाय बाय एंड टेक केयर।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

0: समरेंदर गिल ने क्या दीता गल खत्म यार
1: तू ते साहा तू ही नेड़े तू ते जान तू ही प्यारा
0: ये गाना मैं तुहानू डेडिकेट कर दिया
1: तू ते साहा तू ही नेड़े तू ते जान तू ही प्यारा
0: जान तो प्यारे हो यार तुसी सच्ची गल है
2: अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवा के अलखोर
0: सिमरन कौर आ चुकी है।

अरे प्यार से तो डर लगता है यार। चार घंटे अब नहीं है बेबी। और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, क्या किया आपने, कुछ खास हुआ, कुछ नया हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, आपको परेशान तो नहीं कर रहा कोई, बता दीजिएगा, अपन देख लेंगे यार। आपकी गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप हो। प्रेजेंट लगा दो अपनी 3311063 पर। आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
1: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही रूफ के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: डर लगता है आप लोगों को प्यार से। प्यार ना हो जाए मैं क्या चीज होने होगी दादी की। चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है, थोड़े 5:19:04 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। आज शान का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो है शान ने एक नंबर गाने जो है गाए हैं और एक नंबर इंसान भी है यार ये, लेकिन मौसम एक नंबर है। मौसम मौसम के हाल कुछ इस तरह से, 37 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस ही है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी आज 47% है, कम है यू नो अभी पिछले दिनों से। विंड जो है 16 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है और आज का मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 31 डिग्री सेल्सियस। सो या अपने दिमाग के टेम्परेचर को ठंडा रखिए, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाता है, क्योंकि अगर ये गर्म हो जाए ना तो सारे काम बिगड़ जाते हैं यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो विंडाज।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: अंडेज आने दो बहुत जगह है
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
2: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: बहुत सारा प्यार है शॉपिंग से. बिल्कुल फैमिली शॉपिंग फेयर के बारे में बात कर रही हूँ जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है अल्दाना क्लब में. 10 दिन के लिए ये रहने वाला है, फैमिली फ्रेंडली ये जो है आपके लिए माहौल पूरा होने वाला है शॉपिंग का भी. सो ये 8th of October तक चलने वाला है और ये अल जीवन हॉल अल्दाना क्लब में है. सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक जो है ये ओपन रहेगा, लेकिन फ्राइडे में टाइम थोड़ा डिफरेंट है, दोपहर 3 से लेकर रात के 10 बजे तक. तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए अंदर जाके शॉपिंग करिए और बहुत बढ़िया क्लोथिंग एक्सेसरीज परफ्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें जो है घर का सामान आपको इसमें मिल जाएगा. एंड 5:33 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं. सिमरन कौर आपके साथ है एंड बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोग जो है वो भेजते हो, लिख के इतनी मेहनत करके आप भेजते हो. बस मैं उतना बोलूंगी कि अगर आप मुझे वॉइस नोट के थ्रू भेज देंगे ना तो फिर मैं सबको सुना भी पाऊंगी. यार आप लोगों का जो प्यार और एहसास,
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान. बॉलीवुड की शान, शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे. आज सुनिए

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600 प्लस पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: यू, घर का क्या हाल बना रखा है?
3: तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
4: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
2: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
5: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
6: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
7: नहीं बेटे, के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: दृश्यम दी कॉन्क्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: दी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम दी कॉन्क्लूजन इन सिनेमा 2nd October,
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
6: Overseas released by Zee Studios.

0: से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

बहुत सारा 100 किलो वाला बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, ऐसा मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। वो कह रहे थे कि एक दो दिन लगते हैं वो इसके बाद जो है वो फिक्स जो है वो हो जाता है, लेकिन अभी तक मेरे को दिखा नहीं है कि कहीं पे फिक्स जो है वो अभी तक हो रहा है। और एक्स्ट्रा फीचर जो है मैं चेक

शाम की चाय हो गई, बढ़िया बात है यार, लकी हो यार, शाम की चाय पी रहे हो, मजेदार माहौल है। और चाय पीते पीते ना शाम की ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। वो मम्मियां देखी है घर पे, जब मम्मियां मतलब ऐसे चाय का ग्लास पकड़े रहती हैं और पता नहीं कौन सी गहरी सोच में होती हैं, सो वो काम नहीं आपने करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करो यार, मम्मी को तो नहीं समझा सकते, आपको तो समझा ही सकते हैं यार, समझो ना।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो

आरजे सिमरन के साथ मैं गजी सुनियो कितना देखी हाल चाल सत श्री अकाल एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो आप लोग भेज रहे हो, तो फिर आप लोगों से प्यार है और ये प्यार मैं किस तरीके से जो है वो आपको रिटर्न कर सकती हूँ, वो ये है कि आपको फ्री कपल मूवी टिकट दे सकती हूँ। फिल्म मास्टर UAE आप लोगों के लिए लेकर आए दृश्यम 3 का ये शो, जो कि इस 3rd October को हम सब मिलके देखने वाले हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा बिफोर यू पार्टिसिपेट, अगर आप सैटरडे दोपहर 2 बजे फ्री हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ फिल्म देख लीजिएगा। और फिल्म का कपल पास जीतने के लिए मेरे पास 2 कपल पास हैं, सो यानी कि 4 लोग जा पाएंगे उस पर। सो अगर आप ये कपल पास जीतना चाहते हैं, कपल पास नहीं कपल मूवी टिकट जो है वो अगर जीतना चाहते हो, सो आपको क्या करना होगा, क्विकली आप मुझे 15 से 30 सेकंड के बीच में बताइए कि आप ये मूवी टिकट जो है वो क्यों डिजर्व करते हैं। जी हाँ, 3311063 पर आप मुझे बताइए कि आप ये कपल मूवी टिकट क्यों डिजर्व करते हैं। हे सिमरन, अपना नाम बताइए प्लीज, ड्यूरेशन ज्यादा मत रखिएगा, एनर्जी हाई रखिएगा वो चलेगा यार, मजा आता है मुझे। सो भेज दो 3311063 पर। चलो फिर इंतजार कर रही हूँ।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: यू, घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
4: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
3: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
4: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
5: पे जस्ट 10% एडवांस एट जॉया लुकास टू बुक योर फेवरेट ज्वेलरी नाउ।
6: नाउ वी स्टिल हैव टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन।
5: दैट्स एग्जैक्टली why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
7: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
8: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
7: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
8: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600 प्लस पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
7: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
8: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
9: This is Deepika Padukone.
10: Deepika Padukone.
9: Radio Olive 106.3.
11: I'm a number one. Radio Olive.
12: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
13: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
14: आरजे सिमरन के साथ।
15: Zabardast evening, make you drive golden with.
16: Biggest jewelry festival is now happening at Joya Lucas. Joya Lucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
17: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: With my wife and have an unforgettable memories of this event with my partner.
1: Okay.
0: It's not just a ticket for two of us. It's a chance to create a memory for both of us.
1: Okay.
0: That's why I request you to give me the one of the couple tickets.
1: Hello, G. बधाइयां मिठाइयां थे बहुत सारे बढ़ा गए. अब एक और कपल मूवी टिकट मेरे पास बची हुई है, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, बी क्रिएटिव लिटल. ठीक है, वही हस्बैंड वाइफ, मेरी वाइफ को सरप्राइज करना. भाई बहुत पुराना हो गया है बहाना, अभी मैं मेरी वाइफ ये नहीं. ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ जाओ फिल्म देखने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब अपने दोस्त के साथ भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव हो, कोई नया बहाना बताओ टिकट जीतने का. जितना क्रिएटिव होगे उतने चांसेस बढ़ जाएंगे यार. सो बताइए फुल ऑन एनर्जी के साथ, हे सिमरन, अपना बहाना, मतलब जो भी मुझे इंप्रेस कर सकता है, 3311063 पे व्हाट्सएप कर दो. एक टिकट बची हुई है दृश्यम 3 की, इस 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे. अगर आप फ्री है तभी पार्टिसिपेट करना. I know, right?

0: Shake it, daddy. सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
4: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas release by Zee Studios.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: Zabardast evening, make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: जी सुनियो की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए और अलग अलग रीजन आ रहे हैं सबके दृश्यम 3 की यू नो टिकट जीतने के लिए एंड थैंक यू सो मच. देखो यार सबको नहीं चूज कर सकती हो तो जो लोग रह जाएंगे वो रह जाएंगे कोई बात नहीं.
1: आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया.
1: मैं सिद्धि हूँ और मुझे मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था क्योंकि मैं मंडे को जर्मनी जा रही हूँ पढ़ाई के लिए. तो इसके लिए इट वुड बी रियली कूल अगर हमको दो टिकट्स मिले.
0: लो जी बधाइयां मिठाइयों ने बहुत सारे पटाखे आपने टिकट जो है जीत ली. मम्मी के साथ एंजॉय करेगा मैं भी आपको वहीं पे मिलने वाली हूँ. अपन मिलके जो है वो फिल्म देखने वाले हैं और जितने भी लोगों ने सबने टिकट जीती हैं मेक श्योर की रिव्यू रेडी रखिएगा क्योंकि आपका रिव्यू भी चाहिए रहेगा.

0: चेती आगे मिल जा भी मिल जा आगे में नूनी में फ्लो फ्लो में गा देती हूँ, इतना गंदा गाया जाता है यार, कोई बात नहीं रिकवर हो जाओगे अगले गाने से आप।
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके कान। बॉलीवुड की शान, शान को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे। आज सुनिए शान के गाने सारे।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर। दोहा, गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना फिनाज, साइरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
3: Tough kaam aur bhi aasan. Carmel Group laya hai Shantui ke wheel loaders, excavators aur bulldozers. Mazbooti aisi jo har challenge jeet le. Visit Carmel Group now.
4: कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
5: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
4: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
5: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
4: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th October तक है।
5: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: चीज को बोलती है यार वाइब बड़ी अच्छी है यार, म्यूजिक चीज ही ऐसी है यार, मैं क्या करूँ, सारे गानों की वाइब बड़ी अच्छी होती है लेकिन ये शो की वाइब और भी अच्छी हो गई है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। कल से एक फोटो जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, करीना कपूर और शाहिद कपूर की वाइफ मीरा की। जी हाँ, हम सबको पता है कि शाहिद कपूर का जो है वो क्या बैकग्राउंड जो है वो रह चुका है करीना कपूर के साथ, लेकिन क्या होता है कि चीजें जो है वो लाइफ में बदल जाती है। सो मीरा कपूर के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी जो है अपडेट की थी करीना कपूर ने, क्योंकि वो एक रेडियो शो करती है व्हाट वुमेन वांट, सो उसके लिए इस बार की गेस्ट जो है वो मीरा कपूर होने वाली है। और उन्होंने लिखा भी है कि भाई वो बहुत ही वार्म और बहुत ही लवली है, वो तारीफ वारीफ लिख दी है यार उसकी। सो यार इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी डिबेट जो है चल रही है, बहुत सारी बातें जो है वो हो रही हैं, बट इवेंचुअली यार सब लोग मूव ऑन कर जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। एंड जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ और लोगों को भूल जाओ, पुरानी चीज़ों को, लाइफ उतनी सॉर्टेड रहती है। जितना फंसे रहोगे दिमाग की लगी रहेगी यार।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर,
2: ये गाना
3: पूरे देश को पगला दूंगा। अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम, नाम
4: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 FM جیو بنداس.
2: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
4: Festivities की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट when इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी purchases, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है. अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक. देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट. और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट. है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड and diamonds.
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

all right? सुनियो की तरह की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर

एक नंबर गाने तो आपके लिए चल रहे हैं और एक नंबर फिल्म भी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का टाइटल जो था वो किरण खेर यानी कि अनुपम खेर की वाइफ ने सजेस्ट किया था। सो इसमें एक गाना रहता है ना जो रुक जाए दिल दीवाना, जिसमें शाहरुख खान काजोल को ड्रॉप कर देते हैं, है ना, तो गिरा देते हैं। वो जो ड्रॉप करने वाली चीज थी वो काजोल को बताई नहीं गई थी, क्योंकि आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि भाई साहब जब वो गिरे तो उसका रिएक्शन जो है जेन्युइन आना चाहिए। और उसमें वो एक सीन है जिसमें वो रात को घूमते फिरते और अगले दिन काजोल बोलती है, राज सच सच बताओ कल रात क्या हुआ था, राइट। सो ये सीन इतनी बार मतलब ये शूट किया गया, क्योंकि जितनी बार भी शाहरुख खान अपनी शर्ट ओपन कर रहा था ना काजोल को दिखाने के लिए, तो काजोल हंस देती थी, क्योंकि उस पे जो शाहरुख खान के जो लिपस्टिक के निशान बने हुए थे वो काजोल ने ही लिपस्टिक से बनाए थे, है ना। सो वो जितनी बार भी शूट हो रहा है उतनी बार वो नॉन स्टॉप जोर जोर से हंसने लग जाती थी। सो या, और ये जो रोल है राज वाला, ये आमिर खान को, यू नो, सलमान खान को, सैफ अली खान, इन सबको हुआ था ऑफर, लेकिन शाहरुख खान के पास आया है रोल। और भी बातें बताऊंगी यार इस फिल्म के बारे में। सुनते रहो रेडियो ओलिव कर के, देखते रहो जियो विद नास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
3: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
4: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
3: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर
4: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
5: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
2: नीना गुप्ता,
1: रेडियो आप सुन रहे हैं, रेडियो ओलिव 106.3।
3: ओलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ओलिव नंबर वन।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

और ये शावा ओए ओए के बाद सब लोग डर जाते हैं, बाबूजी आ जाते हैं, लेकिन बाबूजी आज मूड में होते हैं, उसके बाद बाबूजी नाचते हैं, फिर सब लोग नाचने लग जाते हैं। सो यार डीडीएलजे हम सबको रटी पड़ी यार, हम सबको याद है डीडीएलजे में ये जो अभी गाना चल रहा था मेहंदी लगा के रखना, इसमें ग्रीन कलर का जो उसने आउटफिट पहना होता है ना, वो इतना ज्यादा वायरल भी हुआ था। काजोल ने खुद की शादी पर, अजय देवगन की शादी के साथ उनकी जब शादी हुई है ना, तो उन्होंने ग्रीन कलर की महाराष्ट्रीयन साड़ी पहनी थी, क्योंकि उनकी ये आउटफिट बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। और शाहरुख खान की जो फेमस लेदर जैकेट थी, वो उदय चोपड़ा ने हार्ली डेविडसन का जो स्टोर था कैलिफोर्निया में, वहां से $400 की खरीदी थी। सो या उस जैकेट को देख के भी बहुत सारे लड़कों ने जो लेदर की जैकेट थी वो खरीदी थी। अब इस फिल्म के दौरान शाहरुख खान और काजोल ने प्रॉमिस कर लिए थे करण जौहर से कि भाई जो उसकी यू नो डेब्यू फिल्म रहेगी जिसको वो डायरेक्ट करेंगे उसमें वो काम करेंगे, जो थी कुछ कुछ होता है, राइट। सो अब इस फिल्म के लिए SRK ने, यानी कि शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। अब आमिर खान ने उसके बाद से फिल्म फेयर अवार्ड्स पर जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि रंगीला के लिए उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। और DDLJ एक ऐसी फिल्म थी जो कि पहली बार 30 मिनट का टेलीविजन पर, टीवी पर इसकी मेकिंग दिखाई गई थी, 30 मिनट की मेकिंग दिखाई गई थी दूरदर्शन पर, यह पहली बार किसी फिल्म के लिए किया गया था। सो या DDLJ, ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो आई एम जजिंग यू राइट नाउ।

0: क्या गाओगे? रेडियो ऑलिव करके दे जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਹੋਣੇ ਹੋਗੇ ਦਾਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: रियलिटी चेक में हम हर रोज इसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आपकी और हमारी हम सबकी लाइफ में होता है, उससे कोई भी बचा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं भी बच जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि आप भी बच जाएंगे। इसी तरह से लाइफ में रियलिटी चेक जो है ना, वो कभी कभी खुद को भी देना जरूरी होता है और लोगों को बताना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो कहते कि अंत में वही तुमको बुरा बताएंगे जिन्होंने तुम्हें सबसे बेहतर बताया था। ये इट्स लाइफ है ना। तो कभी भी कोई चीज जो है वो परमानेंट ही रहती है, कि कोई भी रिश्ता जो है वो परमानेंट नहीं रहता है। एक टाइम एक फेज जो है वो ऐसा भी आता है कि यार जिस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा बोला, इतना आपको बताया कि भाई तुम बेस्ट हो, ये है वो है, वही इंसान जो है वो आपकी लाइफ में सबसे बुरा इंसान बन जाता है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बन जाता है, और कभी कभी जो है वो इसलिए भी बन जाता है कि सामने वाला वैसा ही था बट आप नहीं पहचान सके। सो लाइफ में आई होप आपको ऐसे लोग ना मिले, क्योंकि इट हर्ट्स यार।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है।
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट।
4: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
9: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो

0: ब्यूटीफुल ट्रैक राइट सिमरन कौर तुहाडे नाल और अब हम खेलते हैं अब आपको पता ही है कि आपने करना क्या है आपने मुझे अपना नाम लिख के भेजना है सो दैट मैं आपका नाम जो है वो रेडियो पे बोल दूं तो क्विकली आप एक काम करिए अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 3311063 पर जी 3311063 चलो अब मैं नाम बोलने जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देती हूँ सई जी दीपक जी कृष्णा जी रुचिका जी थैंक यू सो मच शैलेश जी थैंक यू सो मच हमदान जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल जी थैंक यू सो मच इस्माइल जी थैंक यू सो मच शेख साजिद जी थैंक यू सो मच राजू जी थैंक यू सो मच वैशाली जी थैंक यू सो मच चावला साहब थैंक यू सो मच हुमायूं जी थैंक यू सो मच आथर हुसैन जी थैंक यू सो मच मोनीश इब्राहिम जी थैंक यू सो मच जो जी थैंक यू सो मच श्वेता जी थैंक यू सो मच संतोष जी थैंक यू सो मच मनीष जी थैंक यू सो मच शेख अली जी थैंक यू सो मच ओवेस जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए अमजद अली जी थैंक यू सो मच जुल्फिकार जी थैंक यू सो मच गुलजार जी थैंक यू सो मच साजिद सीमा अली रद्दा थैंक यू सो मच मिराज जी थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी मोहम्मद वसीफ जी बहुत बहुत शुक्रिया फाज जी थैंक यू सो मच तोफियल जी थैंक यू सो मच शैलेश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए नो हाय नो हेलो सिर्फ और सिर्फ मैसेज नारायण जी थैंक यू सो मच गुलजार जी थैंक यू सो मच आय जी थैंक यू सो मच आजाद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए हमजा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए नारायण जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सादिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए एंड दैट्स इट फॉर नाउ जिन जिन लोगों के नाम लिख लिया बेटा अब आप थैंक यू बोल सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलना
1: जिसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाते हैं सबके गान बॉलीवुड की शान शान को वीडियो ऑडियो विश करता है हैप्पी बर्थडे आज सुनिए शान के गाने

0: सिका प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ.
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा. सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

0: कहते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: अब शायद मेरा ख्याल ये वही गाना है, ऐसे ही होने वाला है आपके साथ, क्योंकि हम खेलने वाले हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: सो अगर आप चाहते हैं कि ये गाना जो है वो आप गेस करें और गाएं या फिर बताएं, तो सुन लो फिर। बस बस बस बताओ ये कौन सा गाना लग रहा है आपको। सो वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए, लिखने की जहमत मत करिएगा बिल्कुल भी नहीं। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और गाना गाना है आपकी मर्जी है, बताना है आपकी मर्जी है, लेकिन वॉइस नोट भेजना वो मेरी मर्जी से होगा, ठीक है? और भेज दो 3311063 पर। एक बार वापस से सुना रही हूँ। रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास, इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
5: कूल सॉन्ग। cool

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास। ऑलिव रिचार्ज। कतर में शॉपिंग और सेविंग का नया रीजन आ गया है।
1: नेस्टो पहली बार कतर में लेकर आया है 10-20-30 प्रमोशन,
0: यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सिर्फ 10-20-30 के प्राइस रेंज में।
1: तो डेली नेसेसिटीज हो, ग्रोसरीज, बेकरी, फैशन या फैमिली शॉपिंग का सामान, सब एक ही रूफ के नीचे। और नेस्टो अलग्राफा में 600+ पार्किंग स्पेसेस के साथ शॉपिंग भी कन्वीनियंट।
0: तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 1st से 4th अक्टूबर तक है।
1: नेस्टो 10-20-30 सुपर पावर ऑफ सेविंग्स।
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: रूप कुमार राठौड़
1: मुझ पर खोला के है
0: प्यारी बात है ना कि इश्क मोहब्बत है जिसके दिल में उसको पसंद करता है ये मौला है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत गंदा ट्रीट करते हैं, लोगों के साथ बहुत बुरा करते हैं, लेकिन फिर ऊपर वाले से मांगने जाते हैं। देखो यार, ऊपर वाला भी तभी आपको जो है वो मेरे हिसाब से जो वो मानेगा जब आपके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत होगी। तो फिर अपने दिल में नफरत लग के अब ऊपर वाले से क्या ही मांगेंगे। पहले वो ऊपर वाला आपको सॉर्ट करेगा कि पहले इश्क मोहब्बत प्यार दिल में रखो यार। आए हाय हाय, रियलिटी चेक हो गया यार ये तो। लेकिन हम खेल रहे हैं
2: रेडियो ऑलिव पर।
3: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: और एक चुटकी सॉन्ग है ये। चलिए चेक करते हैं आप में से कितने लोगों ने इस गाने को जो है वो पहचाना है।
4: Hey Simran.
0: Hi.
4: The tune that you have played is from the song Kyunki Itna Pyar Tumko Karte Hai Hum.
0: Thank you so much.
5: Hi Simran, kya hala, theek thaak ho aap?
0: Bahut badhiya dost.
5: Acha wo gana hai. Kyunki Itna Pyar Karte Hai Tumse Sanam Kya Jaano Tum.
0: Thank you so much.
6: Hey Simran, this is Musarrat.
0: Ji.
6: क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच।
6: क्या जानोगे तुम्हारी कसम।
0: हाय हाय, इतनी शायद क्यों होगी वो आप।
7: हाय सिमरन, दिस सॉन्ग इज क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम।

0: समझ गए यार, समझ गए।
1: गुड इवनिंग, माय नेम इज कुमार। द सॉन्ग इज क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम।
0: अरे सो क्यूट, पापा अपने बच्चे की गलत शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बेचारा छोटे बेबी को गाना भी नहीं पता, लेकिन हाउ स्वीट यार, क्यूट। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब मुझे वॉइस नोट भेजते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। तो जितने भी पेरेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ सुन रहे हुए करें ना, तो ट्राई करो यार अपने बच्चों से जवाब भिजवाया करो, मुझे मजा आता है यार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए। और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, खोल खेते रहो जियो बिंदास।

0: सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाँ जी बट कल का दिन खास है, अकेले नहीं आऊंगी, कल वीकेंड को साथ में।

0: मेरी जुदाई में ये गाना सुनोगे?
1: तुझसे पिछड़ के जीना होगा, मर जाएंगे
0: चलो अभी के लिए खाते मिलते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: Bindas.

ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अब सुनिए और

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।